सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1947 के विशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई 2026। स्टूडियो घड़ी इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। आप सभी का दिन आज शुभ हो, मंगलमय हो।

तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है।

जो वक्त बीत गया है वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज प्रसारित की जाने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षनिधि सूक्त 103 और उसके बाद आनंद लीजिए का भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। भूला भाई देसाई की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुनिए 8:30 पर। रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा आपको सुनवाएंगे। टेक गुरु यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। साइबर क्राइम विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार से रानी रायकवार की वार्ता आपको सुनवाएंगे। भारत विभूति यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर आधारित होगा कार्यक्रम आज का। कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नेमा और स्वाति गिरी का।

सुबह 10 बजे आनंद लीजिएगा रेडियो रिपोर्ट का और उसके बाद सुनिए परिक्रमा। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुत करता होंगे फराज फैयाज। काव्य गुंजन, यह कार्यक्रम सुनिए 10:30 पर। यशोधरा का पार्ट 2 आपको आज इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। हमारे वैज्ञानिक, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। सर विश्वेश्वरैया पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी आपके रेडियो मित्र रत्नेश सोनी के साथ और आनंद लीजिए इन कार्यक्रमों का।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 103 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: तत्त इंद्रियम परमम पराचैर धारयन्त कवयः पुरेदम् क्षमेदमन्यद्दिव्य न्यदस्य समी पृच्यते समनेव केतुः। हे इंद्रदेव, आपकी उस पराक्रम शक्ति को क्रांतदर्शी ज्ञानवानों ने प्राचीन काल से ही शत्रुओं को पराजित करने वाले कूर्मों के रूप में धारण किया था। आपकी दो प्रकार की शक्ति धाराएं हैं। एक धारा तो भूलोक में अग्नि रूप में है और दूसरी स्वर्गलोक में सूर्य प्रकाश के रूप में है। युद्ध स्थल पर उल्टी दिशाओं से आती हुई दो पताकाओं की तरह ये दोनों शक्ति धाराएं अंतरिक्ष लोक में परस्पर संयुक्त होती हैं। सधारयत पृथ्वीम पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपह ससर्ज अहन्न हिम भिनद्रौहिणम व्यहन्यव्यंसः मघवा शचीभिः। उन इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया। वज्र रूपी तीक्ष्ण शक्ति धाराओं से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए अहि रौहिण और व्यंसादि दैत्यों का संहार किया, जिससे पुनः अवरुद्ध जलधाराएं प्रवाहित हुईं। स जातु भर्मा श्रद्धधान ओजह पुरो विभिन्द नच्चरद्वी दासी ही विद्वान वज्रिंदस्यवे हेति मस्यार्यम सहो वर्धया द्युम्नमिंद्र। विद्युत के समान तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर इंद्रदेव आत्मविश्वास के साथ आक्रमण द्वारा दस्युओं के नगरों को ध्वस्त करते हैं तथा निर्विघ्न होकर विचरण करते हैं। हे ज्ञान संपन्न वज्रधारी इंद्रदेव, इस स्तोता के शत्रुओं पर भी आयुध फेंकें और आर्यों के बल तथा कीर्ति को बढ़ाएं। तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यम मघवा नाम बिभ्रत उपप्रयंदस्यु हत्याय वज्री यद्ध सूनुः श्रवसे नाम दधेम। शक्ति पुत्र वज्रधारी इंद्रदेव ने शत्रु के संहार के लिए आगे बढ़कर जो नाम कमाया, उस प्रशंसनीय मघवा नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया। तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टम श्रदिंद्रस्य धत्तन वीर्याय सगा अविन्दत्सो अविन्द दश्वान्स ओषधीहि सो अपह सवनानि। उन इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से गौओं, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्यों, आप इंद्रदेव के इन अत्यंत पराक्रमपूर्ण कार्यों को देखें और उनकी अद्भुत शक्ति के प्रति आत्मविश्वास जगाएं। भूरिकर्मणे वृषभाय वृषणे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम य आदृत्या परिपंथीव शूरो यज्वनो विभवजन्नेति वेदः। जो शक्तिशाली इंद्रदेव लालची दुष्टों लुटेरों द्वारा एकत्रित किए गए धनों का तथा यज्ञीय कर्मों से रहित राक्षसी वृत्ति से युक्त दैत्यों के धनों का हस्तांतरण करके ज्ञानियों को सम्मानित करते हैं, अर्थात दुष्ट जनों से प्राप्त धन को श्रेष्ठ जनों में वितरित कर देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले महान दाता और सत्य बल संपन्न इंद्रदेव के लिए हम सोम तैयार करें। तदिंद्र प्रेव वीर्यम चकर्थ यत् ससंतम वज्रेणा बोधयोहिम अनुत्वा पत्नीर हृषितम वयश्च विश्वे देवासो अमदन्ननुत्वा। हे इंद्रदेव, आपने सोते हुए वृत्र को वज्र के प्रहार से जगाया अर्थात पराभूत किया। वस्तुतः यह आपका परम शौर्य है। ऐसे में आपको आनंदित देखकर सभी देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अति हर्ष अनुभव किया। शुष्णम पिप्रुम कुयवम वृत्रमिंद्र यदावधीर वि पुरः शंबरस्य तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। हे इंद्रदेव, जब आपने शुष्ण पिप्रु कुयव और वृत्र का हनन किया और शंबरासुर के गढ़ों को धूल धूसरित किया तो मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और दिव्यलोक हमारे उत्साह को भी संवर्धित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 103 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं। हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा, अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा। तू दुनिया में दुनिया तुझ में, तू लच पलट का फेरा।

भूत जगत के तुम ही ने जग घेरा तुम ही भूत भूत जगत के।

होगी तुम ही गुरु तुम चेहरा अजब तमाशा तेरा सामल अजब तमाशा तेरा अजब तमाशा तेरा सामल अजब

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में लाल किला ट्रायल का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास साक्षी है कि दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज भारत की आजादी के लिए आगे बढ़ी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों और खराब मौसम को देखते हुए उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और नवंबर सन 1945 से लेकर मई 1946 तक आजाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला, जो लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध है। ये मुकदमा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला था। इस ऐतिहासिक मुकदमे की अनुगूंज से पूरा भारत आंदोलित हो उठा। इसी मुकदमे के दौरान जन जन की जुबान पर नारा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, तीनों की हो उम्र दराज। इस मुकदमे और नारे ने जैसे जागरण का एक मंत्र फूंक दिया था, मानो ये कोई मुकदमा नहीं स्वाधीनता का कोई आंदोलन हो। इसने देश की आजादी के लिए लड़ रहे अनगिनत नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे सुप्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई। मुकदमे के दौरान जब वो लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। उनकी दलीलों से पूरे भारत में जैसे देशभक्ति का एक ज्वार सा उठ खड़ा हुआ था। भूला भाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड़ में 13 अक्टूबर सन 1877 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा वलसाड़ के अवाबाई स्कूल में और फिर आगे की पढ़ाई भारदा हाई स्कूल बॉम्बे में हुई, जहां उन्होंने सन 1895 में अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी दौरान उनका विवाह इच्छाबेन के साथ संपन्न हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ धीरू भाई। आगे की पढ़ाई के लिए भूला भाई देसाई ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया तथा अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें वर्ड्सवर्थ पुरस्कार और इतिहास तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पहला स्थान प्राप्त करने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। पढ़ाई के बाद वो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। अध्यापन के दौरान ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की तथा सन 1905 में बॉम्बे उच्च न्यायालय से वकालत प्रारंभ की। वे वकालत के द्वारा ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। बहुत जल्द अपने शहर और फिर देश भर में एक मुखर और योग्य वकील के रूप में वो विख्यात हो गए।

वकालत करते हुए ही भूला भाई देसाई का रुझान देश की राजनीति की ओर हुआ। वो कुछ लोगों के संपर्क में आए। देश में स्वराज की आवाज उठ रही थी। भूला भाई देसाई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग में शामिल होने के साथ की। साइमन कमीशन के विरोध के समय वो सामने आए। जून सन 1928 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया। भीषण अकाल के बाद भी प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। सरदार पटेल की अगुवाई में भूला भाई देसाई ने बहुत मजबूती के साथ किसानों के मामले का प्रतिनिधित्व किया और अंततः विवश होकर ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा। 22% की लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। भूला भाई देसाई गांधी जी के विश्वस्त और प्रिय सहयोगी हो गए थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु देश भर में लगातार आंदोलन हो रहे थे। गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता का मंत्र बना दिया था। भूला भाई देसाई को भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ब्रिटिश राज के विरोध का एक प्रभावशाली माध्यम लगता था। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर सन 1932 में उन्होंने स्वदेशी सभा का गठन किया और अपनी गतिविधियां तीव्र कर दीं। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगभग 80 कपड़ा मिलों को इस महाअभियान में शामिल कर लिया। सभी मिल मालिकों को विदेशी माल न खरीदने के लिए उन्होंने तैयार किया। स्वदेशी सभा की गतिविधियां अंग्रेजों की आंख की किरकिरी थी, इसलिए ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन भूला भाई देसाई भला कब रुकने वाले थे। स्वदेशी सभा की गतिविधियों को देखते हुए सन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल के कठिन जीवन को सहते हुए भूला भाई देसाई बीमार रहने लगे। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आगे चलकर उन्हें रिहा किया गया और अपने इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाना पड़ा। सन 1934 में वो गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के मुद्दे का उन्होंने विधानसभा में पुरजोर विरोध किया। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण ही वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले पाए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस दौरान भूला भाई देसाई सक्रिय रहे। अंग्रेज सरकार पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के साथ साथ एक आदर्श भारतीय गठबंधन बनाने के उद्देश्य से उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से भी बातचीत शुरू की थी। जब आजाद हिंद फौज के तीनों अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तब भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक रक्षा समिति बनाई गई। तेज बहादुर सपरू के नेतृत्व में ये रक्षा समिति कार्य कर रही थी। जब लाल किला ट्रायल शुरू हुआ तो तेज बहादुर सपरू की अस्वस्थता के कारण भूला भाई देसाई ने इस मुकदमे की पैरवी की। ये एक ऐतिहासिक मुकदमा था। भूला भाई देसाई ने 3 महीने लगातार काम किया और उन्होंने अपने तर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों ने एक अनंतिम सरकार के आदेश के तहत अपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हथियार थामा, जो उनका हक था। उनका पहला तर्क था कि आजाद हिंद फौज एक उचित रूप से गठित और स्वशासित सेना थी, जिसे भारतीय अधिकारी संचालित कर रहे थे, जिसका अपना अनुशासनात्मक कोड, रैंक, वर्दी और चिन्ह था। यह सिर्फ जापान द्वारा संचालित कोई ग्रुप नहीं था। भूला भाई देसाई ने यह तर्क दिया कि आजाद हिंद फौज स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार की ओर से लड़ रही थी और आजाद हिंद सरकार को 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। इसके बाद ही उसने ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा की। इसका अर्थ था कि एक युद्धरत राज्य के रूप में आईएनए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। इस तरह भूला भाई देसाई ने राजद्रोह के तर्क को घुमाकर उस बिंदु पर ला खड़ा किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक गुलाम देश के पास एक विदेशी शासक से युद्ध कर उसे बाहर निकालने का अधिकार प्राप्त है। भूला भाई देसाई के अकाट्य तर्कों का ये प्रभाव रहा कि तीनों आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त कर वेतन भत्ते जब्त करने के आदेश दिए गए तथा किसी सुदूर जगह भेजने की सजा सुनाई गई। उनके तर्कों ने न केवल तीनों को फांसी की सजा से बचा लिया, बल्कि उनकी पैरवी के बहाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी हेतु किए गए कठिन प्रयासों की जानकारी जन जन तक पहुंच गई। ये मुकदमा जैसे आजाद हिंद फौज का प्रचार मंच बन गया। मुकदमे के दौरान पूरे भारत में आजादी के लिए फिर से तीव्र आवेग पैदा हुआ। लोग देश पर मर मिटने को तैयार थे। जगह जगह अंग्रेजी राज के विरुद्ध धरने प्रदर्शन हुए, एकता की सभाएं हुईं और अंग्रेज जान गए कि अब इस देश में और टिकना उनके लिए संभव नहीं है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की भोर देखने के लिए भूला भाई देसाई नहीं थे। 6 मई सन 1946 को वो अनंत में विलीन हो चुके थे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैविक ब्लैक बॉक्स GPS या रडार से बहुत पहले प्राचीन भारतीय नाविकों ने विशाल और अंतहीन समुद्र में जीवित रहने के लिए एक जैविक ब्लैक बॉक्स पर भरोसा किया था। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में खो गए हैं और हर तरफ केवल लहरें ही लहरें हैं। ऐसे में आप जमीन का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए वे दिशपक्षक गुहा, दिशा खोजने वाले पक्षी को छोड़ते थे, जिन्हें विशेष रूप से नौवाहन के लिए रखा जाता था। प्राचीन जातक कथाओं में दर्ज ये अनूठी विधि आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थी। यदि छोड़ा गया पक्षी सीधा उड़कर आंखों से ओझल हो जाता तो इसका मतलब था कि जमीन उसी दिशा में है, लेकिन यदि वह गोल चक्कर लगाकर वापस जहाज पर आ जाता तो इसका अर्थ था कि जमीन अभी बहुत दूर है। प्रकृति पर आधारित इस तकनीक ने वैदिक काल के व्यापारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूर्वी और पश्चिमी महासागरों को पार करने में मदद की। यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे भारत के समुद्री पूर्वजों ने अपनी शुद्ध बुद्धिमत्ता के दम पर खुले समुद्रों पर विजय प्राप्त की थी।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये TB भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। TB किसी को भी हो सकता है। अगर आपको TB हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी TB मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम TB की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक TB खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड TB। TB हारेगा, भारत जीतेगा।
2: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है TB की बीमारी। TB हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित
4: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों से का 7वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं और इस बार भी हमारे साथ हैं पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में चुरा भोंका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर दमोह तक पहुंच गया और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े। और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती और दमोह में नरई पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहाँ अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं।
0: जी, क्या बात।
1: तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है।
0: जी।
1: वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है तो संघर्षशील लोग होते हैं, लड़ाके उसी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है जहाँ समृद्ध सभ्यता हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य पूर्व की ओर से अधिक सेनाएं या लड़ाके भारत की ओर कूच करते हैं और यहाँ पर अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ये प्रकृति का बेसिक अंतर है। इसी प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि रानी दुर्गावती, ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं रही होगी, पर ये आक्रमण अचानक से हुआ था। दूसरी तरफ आसफ खान लंबे समय से अपनी सेना को संगठित कर रहा था। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था, इसीलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
0: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी, आगे बढ़े हम और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा? और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खान आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने?
1: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी तो उन्होंने 4 पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
0: जी।
1: और उधर आसफ खान को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहाँ हो गई।
0: जी।
1: तो आसफ खान को पता नहीं चल पा रहा था।
0: जी।
1: उसने कुछ समय तो इंतजार किया।
0: हाँ।
1: और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
0: जी।
1: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2,000 से 3,000 की सेना रानी के पास थी।
0: जी हाँ।
1: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
0: जी हाँ।
1: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी, लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी
0: जी।
1: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
0: वाह।
1: कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को बुलाया और उसे संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहाँ पर करो और मरो की स्थिति है, कोई जाना चाहे तो वापस जा सकता
0: जा
1: है,
0: सकता है जी।
1: लेकिन रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने बड़ा काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एकमत होकर युद्ध करने का संकल्प लिया और एकजुट होकर यह स्वीकार किया कि इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा सामूहिक रूप से सभी उसके भागीदार होंगे,
0: जबकि सब जानते थे कि अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।
1: बिल्कुल। अब नरई में रानी की सेना तैयार थी। उधर से सूचना मिल चुकी थी कि आसफ खान की सेना के फौजदार नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद अपनी सेना के साथ नरई के जंगलों में पहुंच रहे थे
0: जी।
1: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा
0: जी।
1: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
0: अच्छा।
1: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
0: तो मतलब कह सकते कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति में के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
1: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
0: हाँ।
1: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
0: तो पूजा जी एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे मार गिराया था।
1: जी हाँ, ये देशज तकनीक कह सकते हैं इसको
0: जी।
1: कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस तकनीक से लड़ना जानते थे
0: जी।
1: और कई सारे युद्ध उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि लड़े और जीते भी।
0: ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आख्यान कुछ लोकगीत गाए गए रानी दुर्गावती जी की स्तुति में और ये वहां पर बहुत काम आए युद्ध में, वो क्या थी तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
1: हम अभी तक जब भी सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार में कई सारे लेखक हैं
0: जी।
1: हमने अबुल फजल का नाम सुना, फरिश्ता का, बदायूनी का, बहुत सारे नाम हैं। पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष लिखित इतिहास दरबारी लेखकों द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी दरबारी लेखक लिखते हैं तो वो राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले को बहुत ही निष्कृष्ट भी दिखाया जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती जिसमें कि दरबार में लेखकों को रखकर उनसे इतिहास लिखवाया जाए
0: जी।
1: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता। पर हाँ, अगर हम
0: लोग
1: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं, जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
0: यश को जो पहले जस कहते थे
1: तो खूब सारे आख्यान जस गीत हम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
0: वाह,
1: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी
0: जी।
1: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है
0: जी।
1: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है। और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो
0: जी।
1: तो एक सेला लोकगीत है
0: जी,
1: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है
0: जी।
1: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण मां जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। रण मां जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो, राजा दलपत के रानी हो, रण चंडी कहाए, डगर डगर मां डोलो हो, गण मंडला बचाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए।
0: वाह क्या बात।
1: तो इसका अर्थ यह है कि जैसे माँ दुर्गा अपनी संतानों की रक्षा करती है, महारानी दुर्गावती वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करती है। वो रण में तलवार लेकर जूझ पड़ती है, वह रानी दुर्गा कहलाती है
0: जी।
1: वह राजा दलपत की रानी है, रण चंडी कहलाती है। डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है, माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है, माँ दुर्गा अपने हाथों में तलवार लिए रण चंडी हो गई है।
0: वाह पूजा जी क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप हमने कई बार जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
1: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: वो समाज का आईना नहीं है,
0: वो
1: अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
0: बिल्कुल।
1: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में
0: जी।
1: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो,
0: हाँ,
1: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है
0: जी।
1: और जनता उसे कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए
0: जी।
1: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
0: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियां कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति, या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
1: जरूर। अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढें, तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी। अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया, अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई। तो इस पर 4 पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन माँ सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है
0: जी।
1: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है
0: जी।
1: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है
0: जी।
1: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं और उनके केस लंबे हैं
0: जी।
1: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है।
0: बिल्कुल।
1: और दमक दमक रानी गर्जे, फौजी दे ललकार। इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है।
0: जी।
1: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
0: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है।
1: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो, ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
0: याद
1: है।
0: किया जाता है। बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है, लोकगीतों में सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गोंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
1: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है।
0: जी।
1: इस गीत की चार पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर फौजी सबे तैयार।
0: वाह क्या बात।
1: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया।
0: जी।
1: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं।
0: जी।
1: उनकी आंखों से का है, अखियन से बरसे अगिया।
0: जी।
1: आंखों से आग बरस रही है और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
0: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है, जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है। जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं, लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
1: जरूर।
0: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं, तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
4: आपने मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
3: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नजरिए से देखने मिल रही हैं?
4: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
3: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
4: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
3: बिल्कुल।
4: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा, जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
3: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
4: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हो, उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं। भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
3: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
4: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो बहुत सारों को डाला, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, गिल्बी ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी एआई में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने एआई सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी एआई इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो एआई की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो एआई अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसेंट से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
5: अच्छा
4: पूरा डेटा आपने एआई को दे दिया,
5: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया एआई वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
4: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा, अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
5: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
4: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा, वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने जिसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया, उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेज को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा, वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
5: अच्छा,
4: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
5: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
4: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा,
5: ठीक है,
4: फिर उस आईडी की पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
5: ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं,
4: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो, जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना, हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, वो क्लोज वालों के लिए था, लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
5: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
4: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे, वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
5: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
5: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
4: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
5: अच्छा।
4: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
5: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
4: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
5: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
4: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
5: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
4: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
5: ठीक है,
4: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
5: कुछ नहीं, बस
4: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
5: ठीक है,
4: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
5: ठीक,
4: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
5: आप ही थे कि नहीं थे। बिल्कुल।
4: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे, तो आप तुरंत वहां पे लॉक कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूं, इसको अपन हटा देते हैं।
5: जी बिल्कुल,
4: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
5: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
4: ये जानकारी अब आपको बढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
5: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़े, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है, क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई हैं, वो है एक डिजिटल अरेस्ट। ये क्या चीज है, इससे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
4: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
5: कुछ नहीं होता है,
4: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज्यादातर केसेस जो डिजिटल अरेस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
5: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है। हाँ। कुल मिला के तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
4: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है।
5: हाँ हाँ।
4: तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है।
5: हाँ,
4: तो उसके चक्कर में
5: ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बन।
5: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपको, नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
4: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
5: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
4: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
5: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
4: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आया पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
5: जी जी जी,
4: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
5: जी।
4: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
5: तो फिर इमोशनल बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
4: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर लोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे अब कंट्रोल आया है।
5: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है,
4: एयरपोर्ट्स पे हो गया,
5: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
4: नेट मिल गया,
5: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
4: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
5: ठीक है,
4: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
5: बहुत जरूरी है,
4: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक व्हाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं, मैंने चूंकि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया. उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है आप इसको यूज करो. उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को, जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो. वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी. जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था. सिर्फ मल सा इतना, मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें. तो जो दूसरा वाला था, ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो. अब क्योंकि मैं हूँ, मैं मिस यूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते.
5: बिल्कुल, AI से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें.
4: मैम, AI का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है, एक तो AI वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें XYZ की जरूरत है, कम से कम हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो. दूसरा है डीप फेक. डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर. वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं. वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर OTP ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया. लेकिन AI से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज 2-step वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट OTP या मेल यहाँ पे भी आएगा वहां पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन AI खुद एक मशीन है और जो आपके पास OTP भेज रहा है वो भी एक मशीन है. वो कहते हैं कि AI में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन AI एक मशीन है. बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
5: जी,
4: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि AI जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते. कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल OTP जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है.
5: ओ.

0: भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है।
1: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़ लें, आपके पर
0: कभी ना कभी तो फंसोगे। डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो, आपका हो, मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है।
1: बिल्कुल।
0: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा?
1: जी,
0: पॉजिटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, हम क्राइम की बात करें, साइबर की बात करें, तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
1: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखे कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उतनी ही सतर्कता, उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है। वास्तविक बने रहिए। कुछ भी ऐसा लगता है तो पहले क्रॉस चेक करें। ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें।
0: मैम, मैं कहना चाहूंगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी OTP या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, CVV हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे OTP मांगे तो उसको OTP कभी ना दी जाए। सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है OTP का। आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आपसे OTP मांगेगा ही नहीं। सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से OTP नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी ID वगैरह ले लीजिए, फिर भी OTP ना दीजिए। ID की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन OTP ना दो।
1: जी,
0: सबसे बेस्ट सिनेरियो यही।
1: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा

0: उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, और आज भारत विभूति के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम बात करेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी पंत की। श्रोताओं, इस तारतम्य में आज मेरे साथ हैं मेरे रेडियो मित्र
3: दीपेश,
2: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, भारत विभूति में आज बहुत ही खास दिन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हिमालय की गोद में अपनी आंखें खोली और जिनके इरादे उसी हिमालय जितने अटल और अधिक रहे। उत्तराखंड की वादियों से निकला एक ऐसा लड़का जो पहले एक होनहार वकील बना, फिर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, फिर उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री और आखिरकार भारत का गृह मंत्री, और इन सब से भी बढ़कर वो थे एक सच्चे इंसान जिन्होंने कभी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवन गाथा। साथियों, ये नाम केवल दो शब्द का नहीं है, ये तो एक पूरा युग है, एक संघर्ष है, एक विचारधारा है। ये नाम उन लाखों लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रिटिश दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मुक्ति की राह तक रहे थे। सोचिए, एक युवक जिसकी वकालत चमक रही थी, जिसका भविष्य उज्जवल था, जिसके पास सुख सुविधाएं और समृद्धि के सारे द्वार खुले हुए थे, उसने ये सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, माँ भारती की पुकार। उस पुकार को सुनकर उन्होंने अपनी कलम और मुकदमे की फाइलें एक तरफ कर दी और थाम लिया तिरंगा।
4: जेल की अंधेरी कोठरियां उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां उनके इरादे को नहीं झुका सकी, क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हो उसे न ठंड सताती है, न भूख, न कारागार। और जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस विशाल राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। भारत वर्ष की पावन धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, त्याग और कर्म निष्ठा से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम आभा से भर दिया। इन्हीं दिव्य विभूतियों में से एक थे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वे उत्तर भारत के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: श्रोताओं, पंत जी का जीवन संघर्ष समर्पण और सफलता की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया। वो एक ऐसे राजनेता थे जो जनता के दिलों में बसते थे, जिनकी सरलता, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मित्र और विरोधी दोनों ही मानते थे। भारत सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 1957 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से अलंकृत किया। ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। पंत जी का जीवन और कार्य आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है।
4: पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वायु और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में पले बढ़े गोविंद बल्लभ में बचपन से ही उस पर्वत सी दृढ़ता और स्थिरता विद्यमान थी। उनके पिता श्री मनोरथ पंत एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य। माता का नाम गोविंदीबाई था जो एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। माता पिता दोनों ने बालक गोविंद में संस्कारों के बीज बचपन से ही बोए। माता से उन्हें करुणा, सेवा भाव और धैर्य की शिक्षा मिली तो पिता से अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के गुण प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही गोविंद वल्लभ एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। वे पढ़ाई में अपनी आयु के अन्य बालकों से सदैव आगे रहते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। गणित, इतिहास और भाषाओं में उनकी विशेष रुचि थी। उनके अध्यापक उनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो जाते थे और अनुमान लगाते थे कि यह बालक एक दिन अवश्य महान बनेगा।
2: बिल्कुल श्रोताओं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद पंत जी उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज चले गए। वहां उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया जो उस समय उत्तर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यहां उनका परिचय राष्ट्रवादी विचारधारा और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से हुआ। इलाहाबाद में पंत जी का मन केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं, सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय हिस्सेदारी की। इलाहाबाद उन दिनों भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और कई बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन संपर्कों ने पंत जी की राजनीतिक चेतना को और भी अधिक पैना कर दिया।
4: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री LLB प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। उनकी वकालत का एक विशेष गुण यह था कि वे सदा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। कमजोर और गरीब लोगों के मुकदमे वे प्रायः निःशुल्क लड़ते थे। उनकी तर्क शक्ति और वाक्पटुता के सामने बड़े बड़े वकील भी परास्त हो जाते थे। कुछ ही वर्षों में वे काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाने लगे। परंतु वकालत की समृद्धि और सुख सुविधाएं उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उनके भीतर देश सेवा की ललक प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पंत जी ने बिना किसी दुविधा के अपनी सफल वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की पुकार पर उठ खड़े हुए। यह उनके त्याग और देशभक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वे सफल रहे।
2: फिर सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पंत जी ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने जनजागरण का काम किया और हजारों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। इस कुप्रथा के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सामान को बिना किसी पारिश्रमिक के ढोना पड़ता था। ये न केवल शोषण था बल्कि मानवीय गरिमा का घोर अपमान भी था। पंत जी ने जनता को इस दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
4: 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के पवित्र पर्व पर बागेश्वर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने कुली बेगार प्रथा से संबंधित कागजात सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस आंदोलन की सफलता ने पंत जी के नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया और कुमाऊं में उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया, तो पंत जी ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने और अन्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने की अपील जनता से की। इसके फलस्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल की कठोर परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु उनके हौसले को जरा भी नहीं तोड़ सका। कारागार में भी वे अपने साथी कैदियों का मनोबल बनाए रखते और देश की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते। उनकी कई जेल यात्राएं हुई और हर बार वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आए। उनका यह अटूट संकल्प जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
2: वहीं अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का आह्वान किया। पंत जी ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उन्हें अहमदनगर किले में नजरबंद रखा गया। अहमदनगर किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने 3 साल से अधिक का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वतंत्र भारत के भविष्य की योजनाएं बनाई और अपने साथियों के साथ राजनीतिक विचार विमर्श किया। ये कठिन काल उनके लिए एक अनमोल अनुभव था जिसने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया।
4: सन 1923 में पंत जी पहली बार संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने। विधानसभा में उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा और तेज लेकर आई। वे एक प्रखर और निर्भीक वक्ता थे। उनके भाषण तर्कपूर्ण, तथ्यों पर आधारित और ओजपूर्ण होते थे। उन्होंने विधानसभा में किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। सन 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में भारी बहुमत प्राप्त किया। पंत जी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार और प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, किंतु सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौजूदा सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।
2: 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जब उत्तर प्रदेश के लिए पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, तो सर्वसम्मति से पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम सामने आया। वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये पद उन्हें उनकी योग्यता, अनुभव और जनप्रियता के चलते मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सन 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत जमींदारों की अतिरिक्त भूमि सरकार ने ले ली और उसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। इस एक कदम से लाखों किसान परिवारों की जिंदगियां बदल गई, जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे।
4: उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में नए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। उनका मानना था कि शिक्षित नागरिक ही देश की सबसे बड़ी संपदा है। महिला शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में सड़क, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए उन्होंने कई सुधार किए। वे 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस पूरे कार्यकाल में उनकी ईमानदारी और कुशलता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा।
2: दिसंबर सन 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक था। पंत जी ने इस पद को अत्यंत दक्षता और कुशलता से संभाला। गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन था। देश की आजादी के बाद ये सबसे जटिल और संवेदनशील प्रश्न था। विभिन्न भाषाई समूह अपने अपने राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर हिंसा भड़की हुई थी। पंत जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया। 1 नवंबर सन 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश में नए राज्यों का गठन हुआ।
4: हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में पंत जी की भूमिका अग्रणी रही। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में जोरदार तर्क रखे और यह सुनिश्चित किया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस निर्णय से अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान कम न हो। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। अनेक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विवादों को उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझा लिया। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से उन्होंने शासन तंत्र को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया। उनके नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता और अधिक सुदृढ़ हुई।
2: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जीवन भर सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयां, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध सदैव अपनी आवाज उठाई। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई नीतियां भी बनाई और उन्हें कार्यान्वित भी किया। वे गांधी जी के इस विचार को मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है और इसे दूर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति और सरोकार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता है। उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए न केवल जमींदारी प्रथा खत्म की, बल्कि कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा।
4: पंत जी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदार बनाने पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछाया गया। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए नए कॉलेजों की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में भी काम किया।
2: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व बहुआयामी और अत्यंत ही प्रभावशाली था। वो शारीरिक रूप से लंबे, चौड़े और तेजस्वी पुरुष थे। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक और दृढ़ता थी। जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो श्रोताओं को बांध लिया करता। उनके भाषण कभी खोखले नहीं होते थे। वो हमेशा तथ्यों और तर्कों पर आधारित होते। उनका सबसे बड़ा गुण था उनकी अटूट ईमानदारी। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था और यही कारण था कि जनता में उनके प्रति इतना विश्वास और सम्मान था।
4: सरलता उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। वे एक साधारण कुर्ता धोती में रहते थे। उन्हें आडंबर और प्रदर्शन से आपत्ति थी। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद वे आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बात करते। उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें हल करने का प्रयास करते। उनका कोई भी कार्यालय आम नागरिकों के लिए खुला रहता था। पंत जी का जीवन दर्शन अत्यंत व्यवहारिक था। वे आदर्शवादी थे किंतु हवा में नहीं जीते थे। उनका मानना था कि देश की सेवा शब्दों में नहीं कर्म से होती है। वो राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनके लिए राजनीति एक मिशन था, व्यवसाय नहीं। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा। पंत जी साहित्य और संस्कृति में भी गहरी रुचि रखते थे। हिंदी साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। कुमाऊनी लोक संस्कृति और पर्वतीय कला के प्रति उनका प्रेम जीवन भर बना रहा। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वे पुस्तकें पढ़ने के लिए समय निकाल लेते थे।
2: सन 1957 में भारत सरकार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। भारत रत्न की घोषणा होने पर सारे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो खास तौर से जश्न मनाया गया। इस सम्मान को पाकर पंत जी जरा भी गर्वित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक यही कहा कि ये सम्मान उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया। ये उनकी विनम्रता और उनके महान व्यक्तित्व का ही प्रतीक था। भारत रत्न मिलने के बाद भी पंत जी की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उतनी ही सरलता, लगन और समर्पण के साथ अपना काम किया करते। इस सम्मान ने उन पर और अधिक जिम्मेदारियों का भार जो डाल दिया था। उन्होंने देश की सेवा में और अधिक परिश्रम किया।
4: पंडित गोविंद वल्लभ पंत का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम सालों में धीरे धीरे गिरने लगा था। कई वर्षों की जेल यात्राएं, संघर्ष और अथक परिश्रम ने उनके शरीर पर अपना प्रभाव डाला। वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह देते थे, परंतु पंत जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। बीमार होने के बावजूद वो अपने कार्यालय जाते रहे, फाइलें देखते रहे और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करते रहे। उनके सहयोगी और मित्र उनकी समर्पण भावना से अभिभूत होते थे और चिंतित भी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें विश्राम करने की सलाह दी, किंतु पंत जी कहते थे, जब तक देश को मेरी आवश्यकता है मैं विश्राम नहीं करूंगा।
2: 7 मार्च सन 1961 को ये महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। नई दिल्ली में उनका निधन हुआ और जब ये दुखद समाचार देश भर में पहुंचा तो शोक की एक लहर सारे देश में दौड़ गई। संसद में उनके निधन पर श्रद्धांजलि सत्र आयोजित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के सबसे महान सपूतों में से एक बताया। राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनकी अंत्येष्टि में लाखों लोगों ने उपस्थित होकर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का शरीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके नाम पर कई संस्थाएं, सड़कें, पार्क और भवन बनाए गए हैं जो उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए हैं।
4: इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उनके नाम पर स्थापित है, जो सामाजिक शोध के क्षेत्र में देश की एक प्रमुख संस्था है। उत्तराखंड के पंत नगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका नामकरण उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से किया गया। दिल्ली में उनके नाम पर एक प्रमुख अस्पताल भी है। उनके जन्मदिन यानी 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार इसे राज्य स्थापना दिवस की भावना से जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके जीवन पर निबंध, भाषण और नाटक प्रतियोगिताएं होती हैं। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है।
2: भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक टिकट भी जारी किया है। संसद भवन में उनका चित्र स्थापित है। लखनऊ में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है जो प्रतिदिन लाखों लोगों को उनकी याद दिलाती है।
4: पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक हैं, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, पारदर्शी, प्रेरणादायक और अनुकरणीय। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विश्वास के साथ जिया कि एक व्यक्ति के त्याग और परिश्रम से राष्ट्र का भाग्य बदला जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके सुधार, गृह मंत्री के रूप में देश की एकता को मजबूत करने के उनके अनेक प्रयास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हिंदी को राजभाषा बनाने में उनकी भूमिका, ये सभी उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर भारत सदा गर्व करता रहेगा।
2: भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। सच्ची राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। सच्ची सफलता व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, जन कल्याण में है। उनका जीवन इन्हीं मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। आज जब हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हैं तो हमारे मन में एक ही संकल्प उठना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को और अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। पंत जी अमर है और जब तक भारत है तब तक याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम भारत विभूति में हम बात कर रहे थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन में थे मैं यानी स्वाति और मेरे सहयोगी
4: दीपेश,
2: और इस कार्यक्रम का लेखन किया था अखिलेश कुमार वर्मा ने। तो इसी के साथ ये रेडियो कार्यक्रम भारत विभूति यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी मित्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिप्पुल्स का रहस्य, ग्रीक नाविक और पुरानी नई दुनिया। पश्चिमी दुनिया की इतिहास की किताबों में हिप्पुल्स का नाम अक्सर कोलंबस या मैगेलन जैसी ही श्रद्धा के साथ दर्ज किया जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के इस ग्रीक नाविक को एक ऐसी खोज का श्रेय दिया जाता है जिसने दुनिया बदल दी, मानसून की हवाओं का रहस्य। लेकिन यदि आप 2000 साल पीछे जा सकें और भारत या अरब के किसी बंदरगाह पर किसी नाविक के कान में उसका नाम फुसफुसाएं, तो वे शायद हंस पड़ेंगे, क्योंकि हिंद महासागर के लोगों के लिए हिप्पुल्स का यह रहस्य पिछली शताब्दियों से एक सामान्य जानकारी थी। लंबे समय तक भूमध्य सागरीय नाविक केवल तट के किनारे चलने वाले थे। वे गहरे खुले समुद्र से डरे हुए थे और हर समय तट रेखा को अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करते थे, जिसे वे अरब प्रायद्वीप के किनारों पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते थे। यह यात्रा लंबी, खतरनाक और समुद्री लुटेरों से भरी थी जो खाड़ियों में छिपे रहते थे। लेकिन फिर हिप्पुल्स आया। लगभग 100 ईसा पूर्व में उसने समुद्र की सांस के बारे में कुछ असाधारण महसूस किया। उसने देखा कि दुनिया के इस हिस्से में हवाएं बेतरतीब ढंग से नहीं चलती, वे एक पूर्वानुमेय मौसमी मशीन की तरह थीं। नवंबर से जनवरी तक उत्तर पूर्वी मानसून महाद्वीपीय एशिया से पूर्वी अफ्रीका की ओर शुष्क हवाएं चलाता है। अप्रैल से अगस्त तक यह प्रक्रिया उलट जाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून तेज हवाओं को वापस उत्तर की ओर धकेलता है। हिप्पुल्स की इस खोज ने ग्रीको रोमन जहाजों को तट से चिपके रहने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अपने प्रस्थान का समय निर्धारित करके वे अपने जहाजों को लाल सागर से सीधे भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों जैसे मुजिरिस या बैरीगाजा तक पहुंचा सकते थे। इसने बैरेनिका बंदरगाह को एक फलते फूलते मरुस्थलीय एम्पोरियम में बदल दिया, जहां भारतीय काली मिर्च और रेशम के बदले रोमन सिक्कों का व्यापार होता था। इस समुद्री क्रांति को पहली शताब्दी ईस्वी के एक प्रसिद्ध दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कहा जाता है। एक अज्ञात यूनानी द्वारा लिखित ये दस्तावेज इस नए मार्ग के लिए एक व्यावहारिक नियमावली के रूप में कार्य करता है, जिसमें बंदरगाहों, सामानों और हवाओं के महत्वपूर्ण समय का विवरण दिया गया है। हिप्पुल्स का असली रहस्य परिप्रेक्ष्य का एक सबक है, जहां यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें एक अग्रणी के रूप में सराहा, वहीं स्रोत बताते हैं कि हिंद महासागर के नाविकों ने यूनानियों के आने से कम 800 साल पहले ही इन मौसमी पैटर्नों में महारत हासिल कर ली थी। स्थानीय लोगों के लिए मानसून कोई खोज नहीं थी, वे ईश्वर की सांस थे जो जीवन, खेती और व्यापार की लय तय करते थे। हिप्पुल्स ने मानसून की खोज नहीं की, उसने बस उन लोगों की बात को अंततः सुना और समझा जो सहस्त्राब्दियों से उनका उपयोग कर रहे थे। उनकी कहानी उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब भूमध्य सागरीय दुनिया को आखिरकार एक विशाल, प्राचीन और अत्यधिक परिष्कृत एफ्रो एशियाई नेटवर्क को स्वीकार करने और उसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो रोम के एक शहर बनने से बहुत पहले से फल फूल रहा था।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार को नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में। यह है बुंदेली गायन कलाकार हैं राजकुमार सिंह ठाकुर और उनके साथी।

0: तो शिया राम माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा तुलसी की इन पंक्तियों के साथ हम अपना बुंदेली गायन शुरू करते हैं। तो गणेश जी सरस्वती की वंदना एक लाइन में हो गई और इसके बाद अपन शिव जी के लिए गीत प्रस्तुत करते हैं। वहाँ साहेब बुंदेली
1: शिव समा

और भोले बाबा की तो ऐसी लीला है, देखो तनक तनक सी बात पे प्रसन्न हो जात, और इनको वो चढ़ाओ जात जो कोई को नहीं चढ़ाओ जात, भांग दातुं दो एक लोटा जल, कछु बड़ो मुद की मेवा पकवान नहीं चाने, तनक पे प्रसन्न हो जाते हैं।

0: अब शंकर जी की चर्चा हो गई, एक चर्चा और न हो तो चर्चा अधूरी है। काय से शंकर जी जिनको भजन करते हैं, एक भजन उनके नाव को, फिर उसके बाद हम मनोरंजन की तरफ बढ़े, मनोरंजन गीत बंदेड़ी के।
1: हे राम जू धनी

0: अपन जब संसार में आओ थे गर्भ में जब तो भजन करो
1: उनके सेवा को है
0: खूब भजन करे थे कि भगवान हम बाहर आ जाए इस संसार की माया जाल से और आपको खूब भजन कर हैं और जब आ जाते हैं फिर नहीं करत फिर तो जब ऐसी उम्र हो जाते जब भजन करने लगते पहले नहीं करत देखो आप
2: अरे में

0: तो जा सकरों दा नहीं है कि जगह की कमियां हैं संसार में, माया मोह मोह मक्सल ये जो है बेकार
1: दुखों के कारण है।
0: जा सकरों दा है प्रभु ई माया को फिर आप काट दो और सभी पापों से मुक्त कर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुनी रेडियो रिपोर्ट और अब वक्त कार्यक्रम परिक्रमा का। आइए सुनते हैं परिक्रमा।

आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में गर्मियों की छुट्टियों के बीच एक अलग ही रौनक थी। वैकेशन क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप के तहत लिटिल क्रिएटर्स आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला में बच्चे अपनी कल्पनाओं के रंग लेकर पहुंचे। दो दिवसीय इस वर्कशॉप का मंगलवार को समापन हुआ। वर्कशॉप में कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों ने भाग लिया। जैसे ही गतिविधियां शुरू हुई, बच्चे उत्साहित दिखे। हर बच्चे के मन में एक नया विचार था और हर विचार को आकार देने का एक मौका भी। कार्यशाला की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ कला और विज्ञान एक साथ चलते दिखे। बच्चों को सिर्फ कुछ बनाना ही नहीं सिखाया गया, बल्कि यह भी समझाया गया कि उनके बनाए खिलौनों के पीछे कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। युवा प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से उद्घोष साहित्य सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा परिषद द्वारा 25 मई को सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में गायन और नृत्य सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजकों ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान साहित्य, कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया जाएगा। शहर के बच्चे कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को शहर की आदित्रि चक्रवर्ती ने भरतनाट्यम की अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस अरंगेत्रम रविंद्र भवन में दी। अरंगेत्रम भरतनाट्यम की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स अन्य परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। बता दें कि आदित्रि ने 6 साल की उम्र में श्री लियम नाट्यश्री कला अकादमी ज्वाइन की थी। उनके गुरु शादी और कविता हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के सहयोग से 30 दिवसीय प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 12 मई से 10 जून 2026 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित होगी। इस कार्यशाला में 8 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को नाट्य कला की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान अभिनय, अभिव्यक्ति, शरीर भाषा, संवाद, अदायगी, रचनात्मकता एवं मंच प्रस्तुति जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के साथ साथ उनमें सामाजिक समन्वय और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। दिमाग को क्रियाशील बनाए रखने के लिए किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में बाजार टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी एकाग्रता को पूरी तरह से भंग कर दिमाग को एक गुलाम बना दिया है। आज हम एक बड़े ग्लोबल बाजार से घिरे हुए हैं। ऐसे में हमारे जीवन में किताबों का महत्व और अधिक हो जाता है। किताबें हमें संबल प्रदान करती हैं, हमें विचारशील बनाती हैं। पुस्तकों के महत्व पर ये महत्वपूर्ण अतिथियों ने कहे विचार थे। मौका था नरेश बाथम का गजल संग्रह, अनकही मनोरमा पंत की लघु कथा संग्रह आसपास एवं डॉक्टर मालती बसंत की शोध पुस्तक सद्गुरु कबीर और मानवता के लोकार्पण समारोह का।

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वर्किंग विद कम्युनिटी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में बीएड के 107 और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के 53 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रतिभालय आर्ट्स एकेडमी में चल रही 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन नृत्य कार्यशाला में 25 से अधिक प्रतिभागी अभिनय और अन्य कलाओं की बारीकियां सीख रहे हैं। खास बात यह कि कार्यशाला में 5 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। निदेशक ने के नेतृत्व में चल रही इस वर्कशॉप में अभिनय, वॉइस स्पीच, थिएटर गेम्स, सीन वर्क, इम्प्रोवाइजेशन, संगीत, चित्रकला और प्रॉपर्टी मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले दिन प्रतिभागियों को 4 समूह में बांटकर प्रॉपर्टी के आधार पर सीन तैयार करना सिखाया गया। चित्रकला सत्र में चित्रकार डॉक्टर रेखा भटनागर ने कैनवास पर चेहरे और भाव उकेरने की तकनीक सिखाई। यह थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हाइब्रिड समुद्री संस्कृति, 17वीं सदी का वैश्विक जहाजी बदलाव। कल्पना कीजिए कि आप 17वीं शताब्दी के पूर्वी चीन सागर में एक व्यापारिक जहाज के डेक पर खड़े हैं, जहां प्रशांत महासागर की लहरें वैश्विक नौवहन में हो रही एक क्रांति को छिपाए हुए हैं। पहली नजर में ये जहाज एक क्लासिक चीनी जंग की तरह दिखता है। इसका ऊंचा पिछला हिस्सा और मजबूत खंडों में बटा हुआ ढांचा इस क्षेत्र के किसी भी नाविक के लिए एक परिचित दृश्य है। लेकिन जैसे ही हवा पाल को छूती है, आप एक अद्भुत विसंगति देखते हैं। इस जहाज पर यूरोपीय शैली की रिंगिंग अर्थात मस्तूल और रस्सियों का ढांचा लगा है। ये एक ऐसा तकनीकी मेल है जो इसे पारंपरिक पालों की तुलना में अधिक सटीकता के साथ हवा के विपरीत चलने की अनुमति देता है। ये जहाज उस हाइब्रिड समुद्री संस्कृति का भौतिक रूप है जो 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली थी। इस जहाज पर मौजूद मानवीय तत्व भी उतने ही विविधतापूर्ण हैं। जापानी व्यापारी अक्सर लहरों के पार अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों की एक विविध मंडली को काम पर रखते थे। डेक के नीचे नेविगेटर के कैबिन में आप पुर्तगाली और चीनी नेविगेटरों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देख सकते हैं। उनके सिर एक साझा दस्ता

प्रारंभिक आधुनिकीकरण की पहचान था। ये एक ऐसा काल था जहां सांस्कृतिक विरासत को गोद लेने की आदत केवल यूरोप से एशिया की ओर एक तरफा नहीं बहती थी, बल्कि ये काफी हद तक एक पारस्परिक प्रक्रिया थी। एक चीनी जंग पर मौजूद पुर्तगाली नेविगेटर कोई विजेता नहीं था, बल्कि एक विशेषज्ञ पेशेवर था जिसे पहले से मौजूद एशियाई वाणिज्यिक प्रणालियों में शामिल कर लिया गया था, जो प्रणालियां अक्सर यूरोपीय प्रणालियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लचीली थीं। ये वास्तविकता पुराने 1492 स्कीमा को चुनौती देती है, जो अक्सर पश्चिम के उदय को एक ऐसी कहानी के रूप में चित्रित करता है जहां यूरोपीय तकनीक ने एक स्थिर पूर्व को अभिभूत कर दिया था। इसके विपरीत ऐतिहासिक स्रोत एक इंटरैक्टिव डोमिनेंस का सुझाव देते हैं, जहां सफलता सांस्कृतिक सीमाओं के पार अनुकूलन करने, नकल करने और नवाचार करने की क्षमता पर टिकी थी। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक अभिलेखागार अक्सर उनके अपने शिपिंग मार्गों के सतही नेटवर्क को उजागर करते हैं, वहीं इन हाइब्रिड क्रू का अस्तित्व एशियाई व्यापार के बहुत बड़े डीप वेब की ओर इशारा करता है। इस अदृश्य दुनिया में यूरोपीय विशेषज्ञता को अक्सर एशियाई संगठनों द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता था, जैसे कि शक्तिशाली झेंग परिवार, जिनका राजस्व पूरी डच कंपनी वीओसी से भी अधिक था। यूरोपीय रिंगिंग और बहुभाषी चालक दल वाला हाइब्रिड जंग इस वैश्विक जुड़ाव का प्राथमिक वाहन था। अंततः दोहरी भाषा वाले चार्ट का उपयोग करने वाला पुर्तगाली नेविगेटर एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो कम संकीर्ण और अधिक परस्पर जुड़ी हुई हो रही थी। ये साबित करता है कि प्रारंभिक आधुनिक युग में सबसे सफल खिलाड़ी वे थे जिन्होंने समुद्र की इस हाइब्रिडिटी को अपनाया।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए, अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंज।

0: आज हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। पिछले भाग में आपने सुना था कि संसार के चक्र को देखकर सिद्धार्थ कितने विकल हैं। पिछले भाग में आपने ये भी सुना था कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अब आगे सुनिए।
1: लीजिए सुनिए सिद्धार्थ के सौतेले भाई नंद का पश्चाताप।
2: आरे, ये मुझ पर कैसा अत्याचार! राज्य तुम्हारा प्राप्त मुझे ही था तब का अधिकार। छोड़ा मेरे लिए हाय, क्या तुमने आज उधार। कैसे भार सहेगा संप्रति राहुल है सुकुमार। आर्य, ये मुझ पर अत्याचार। नंद तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार। किंतु करोगे कब तक आकर तुम उसका उद्धार। आर्य, ये मुझ पर कैसा अत्याचार।
1: सिर्फ नंद ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात उनकी सौतेली माता महाप्रजावती के विलाप का करुण दृश्य है अगला काव्यांश।
3: मैंने दूध पिलाकर पाला, सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला। कहां न जाने वह भटकेगा, किस झाड़ी में जा अटकेगा। हाय, उसे कांटा खटकेगा, वह है भोला भाला। मैंने दूध पिला कर पाला। निकले भाग्य हमारे सूने, वस्त दे गया तू दुख दूने। किया मुझे कैकई तूने, हाँ कलंक यह काला। मैंने दूध पिला कर पाला। कह मैं कैसे इसे सहूंगी, मरकर भी क्या बची रहूंगी। जी जी से क्या हाय कहूंगी, जीते जी यह ज्वाला। मैंने दूध पिला कर पाला। जरा आ गई यह क्षण भर में, बैठी हूँ मैं आज डगर में। लकड़ी तो ऐसे अवसर में देता जा ओ लाला। मैंने दूध पिला कर पाला।
1: सौतेली माँ का ये विलाप कैसे थमेगा, कैकई के समतुल्य समझ रही है आज खुद को महाप्रजापति। उधर कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन शोकग्रस्त होकर विचार मग्न है कि मैंने सिद्धार्थ का वीत राग कैसे कैसे मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी रोक ना सका सिद्धार्थ को।
4: मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल, किंतु भरी थाली गई उलट गया वह थाल। चला गया रे चला गया, छला न जाए हाय वह यह मैं। चला गया रे चला गया, खींचा मैंने गुण सतान। निकल गया वह बाण क्षमा, खींचा मैंने गुण सतान। निकल गया वह बाण समान, ममते तेरा मान महान। दला गया रे दला गया, चला गया रे चला गया। स्वस्थ देह सा था यह गेह, गया प्राण सा वह निस्नेह। अश्रु व्यर्थ हैं अब यह मेह, जला गया रे जला गया, चला गया रे चला गया। उसे फूल सा रखा पाल, गया गंध सा वह इस काल। यह विषफल कांटे सा साल, फला गया रे फला गया, चला गया रे चला गया। धिक सब राज पाट धन धाम, धन्य उसी का लक्ष्य ललाम। किंतु कहूं कैसे हे राम, भला गया रे भला गया, चला गया रे चला गया।
1: महाराज शुद्धोधन को भोग विलास ऐश्वर्य फीके लग रहे हैं। अब वे अपने अगले काव्यांश में अपूर्व धैर्य धारिणी यशोधरा से संवाद करते हैं।
4: धीरा है यशोधरे, तू धैर्य कैसे मैं धरूं? तू ही बता, उसके लिए मैं आज क्या करूं?
5: उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके वे लौटे शीघ्र वन से।
4: तू क्या कहती है बहू? पाऊं मैं जहां कहीं, चतुरचरों को भेज खोजूं भी उसे नहीं।
5: तात नहीं।
4: कैसी बात बेटी, यह भूल है।
5: किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है। तात सोचो, क्या गए वे इसी अर्थ हैं? खोज हम लावे उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं?
4: बेटी, वह प्रौढ़ है क्या? वत्स भोला भाला है।
5: पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है।
4: गोपे, यह गर्व और मन क्या उचित है?
5: जो मैं कहती हूं तात, हाय वही हित है।
4: जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है।
5: धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है।
4: तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की। मैं हूं पिता, चिंता मुझे पुत्र की प्रगति की। भूला वह भूला, उठा रखूं क्या उपाय मैं?
5: उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूं हाय मैं।
1: महाराज शुद्धोधन और यशोधरा का संवाद सुन पाषाण हृदय भी पीड़ा से भर उठे, तो प्रजा का भी हाल विकल है।
2: भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही खोटा, दिखा दिखा कर लाभ अंत में आ पड़ता है टोटा। रोते रहे सभी पुर परिजन, राज्य छोड़कर राम गए वन। पड़ा रहा वो धाम धरा धन, खड़ा रहा पर कोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। गए आज सिद्धार्थ हमारे, जो थे इन प्राणों के प्यारे। भार मात्र कोई अब धारे, राज धूल में लोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। हम हो कितने ही अनुरागी, हुए आज वे सब कुछ त्यागी। कैसे इस विभूति का भागी, होता ये घर छोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। लो ये छंदक आया, पर कंथक शून्य पृष्ठ क्यों आया? हे भगवान, ना जाने कौन समाचार ये लाया।
1: प्रजा खुद के भाग्य को कोस रही है, ऐसे में सिद्धार्थ का प्रिय सारथी छंदक नगरवासियों और कुटुंबियों को संबोधित करके सिद्धार्थ के संदर्भ में कहते हैं। कहूं और क्या भाई, आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु ना आई। मारो तुम्हें मुझे, मर जाऊं सुख से, राम दुहाई। झूठ कहूं तो सुगति ना देवे मुझको गंगा माई। जोग भ्रष्ट थे आर्य, उन्हीं की धुन थी उन्हें समाई। राज्य छोड़ सन्यास ले गए, रज ही हाय रमाई। सोने का सुमेरु भी उनके निकट हुआ था राई। अस्त्र वस्त्र भूषण क्या उनको नहीं शिखा भी भाई। हाय, काट डाले वो केश, चिकने चुपड़े कोमल कच्चे। सच्चे सुर भी निवेश, शोभित ही रहता है शोभन।
2: रख ले कोई वेश। दिया समान उन्होंने सबको आशा का संदेश। करे ना कोई मेरी चिंता, नहीं मुझे भयलेश। सिद्धि लाभ

0: क्लेश, तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश्य।
1: छंदक के लौटने के बाद, सिद्धार्थ के सन्यास लेने के बाद जब यशोधरा को पता चलती है, तब वो ऐश्वर्य और विलासता त्यागने का निश्चय करती है।
2: जाओ मेरे सिर के बाल, आली कर्तरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल, उलझे यहाँ न ये आपस में, सुलझे वे व्रतपाल, डसे न हाय मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल, कसे न और मुझे अब आकर हेम हीर मणिमाल, चार चूड़ियां ही हाथों में पड़ी रहें चिरकाल, मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल, क्या है अंजन अंग राग जब मिली विभूत विशाल, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। आज नया उत्सव है धन, आहा इस उमंग का क्या कहना, सुनी अखियों ने भी निरख सखी, क्या अपूर्व कहना पहना, वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान, यह जीवन भी यशोधरा का अंग हुआ, हाय मरण भी आज न मेरे संग हुआ, सखी वह था क्या सभी स्वप्न जो भंग हुआ।

वियोग देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, यह निश्वाय न उठता हाकर, बनता मेरा राग न रोग, मिला नहा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था, लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग, मिला नहा इतना भी योग। पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर, लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, मिला नहा इतना भी योग। दूं किस मुंह से तुम्हें उलहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहां राज्य भी त्याज वहां मैं जाने तुम्हें न देती, आश्रय होता या वह बहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहां किया है, हंत अंत में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है, जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़, तुम सब कुछ हो जिसके, यह लज्जा यह शोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको, मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रथा ही उन्हें उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, क्यों कर सिंधु करूं अपने को,

देख कराल काल सा किसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हय से, वह तुरंग पलित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जय से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, उस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोजती सारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है, तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर वली थे मेरे, मैं इंद्रियासक्त पर वे कब थे विषयों के चेहरे, ऐ मेरे अर्धांग भाव क्या विषय मात्र थे तेरे, हाँ अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे, है नारित्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्त बिहारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मत है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है, यदि मैं पति व्रता तो मुझको कौन भार भय भारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, यशोधरा के भूर भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर आओ भोली भाली, तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह मुझे यही सुख आली, वधु वंश की लाज देव ने आज मुझी पर डाली, बस जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक देखूं बस मैं दानी, कहां तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे यशोधरा कर धारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी, सखी प्रियतम है मन में किंतु कौन इस मन में, दिव्य मूर्ति वंचित भले चर्म चक्षु गल जाएं, प्रलय पिघल कर प्रियना जो प्राणों में ढल जाएं, जैसे गंध पवन में सखी प्रियतम है वन में,

प्रतीते, यही बड़ा बल जन में, सखी प्रियतम है वन में। भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान, यशोधरा के अर्थ में अब भी यह अभियान। मैं निज राजभवन में, सखी प्रियतम है वन में।

हे राम, यहीं इसी आंगन में सखी प्रियतम है वन में। मरण सुंदर बन आया री, शरण मेरे मन भाया री, आली मेरे मन स्ताप से पिघला हुआ वह इस बार, रहा कराल कठोर काल सो हुआ सदै सुकुमार, नर्म सहचर सा छाया री, मरण सुंदर बन आया री, अपने हाथों किया विरह ने उसका सब श्रृंगार, पहना दिया उसे उसने मृद मानस मुक्ताहार, विरुण विहंगों ने गाया री, मरण सुंदर बन आया री, फूलों पर पद रख कूलों पर रच लहरों से रास, मंद पवन के स्पंदन पर चढ़बड़ आया सविलास, भाग्य ने अवसर पाया री, मरण सुंदर बन आया री, फिर भी गोपा के कपाल में कहां आज यह भोग, प्रियतम का क्या यम का भी है दुर्लभ उसे सुयोग, बनी जननी भी जाया री, मरण सुंदर बनाया री, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, जिए जल जल कर काया री, मरण सुंदर बनाया री, जलने को ही स्नेह बना उठने को ही वाष्प बना है, गिरने को ही मेह बना जलता स्नेह जलावेगा ही, फोले वाष्प फलावेगा ही, मिट्टी मेह गलावेगा ही, सब सहने को देह बना जलने को ही स्नेह बना, यही भला आंसू बह जावे रक्त बिंदु कह किसको भावे, मैं उठ जाऊं सखी वे आवे, बसने को ही गेह बना जलने को ही स्नेह बना, सखी वसंत से कहां गए वे, मैं उष्मा सी यहां रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, जागी किसकी बाष्प राशि जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी, सखी वसंत से कहां गए वे, मैं उष्मा सी यहां रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, जागी किसकी बाष्प राशि जो सूने में सोती थी,

थी, विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज बही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में, शरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में। नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में।

मूर्छा बनी वही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। हेम पुंज हेमंत काल के इस आतप पर नारूं, प्रिय स्पर्श की पुलकावलि में कैसे आज विसारूं। किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहां तक धारूं, तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। मेरी बांह गही स्वामी ने, मैंने उनकी छांह गही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, मेरा धुंधलापन कोहरा बन छाया सबके आगे। उनके तप के अग्नि कुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही, मैंने ही क्या सहा

आस तंत कब टूटे, दिन मुख दम के पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। स्वामी के सद्भाव फैलाकर फूल फूल में फूटे, उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्जय झूठे। उनके श्रम के फल सब भोगे, यशोधरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी ही बाधा व्यथा सही। कूक उठी है कोयल काली, ओ मेरे वन माली, चक्कर काट रही है रह रह, सुर भी मुग्ध मत वाली।

ध्यान से ले को पल की लाली, फूल उठी है हाय मान से प्राण भरी हरियाली। ओ मेरे वनमाली, ढलक न जाए अर्ध आंखों का, गिर ना जाए यह थाली, उड़ ना जाए पंछी पाखों का, आओ हे गुणशाली, ओ मेरे वनमाली। उनका यह कुंज कुटीर वही, झड़ता उड़ अंश अबीर जहां, अली को किल कीर शिखी सब हैं, सुन चातक की रट पीव कहां। अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहां, सखी जा पहुंचे सुध संग कहीं, यह अंध सुगंध समीर वहां, दरक कर दिखा गया निज सार जो, हंस दाड़िम तू खिल खेल, प्रकट कर सका ना अपना प्यार जो, रो कठिन हृदय सब झेल। बलि जाऊं चात की, बलि जाऊं इस रट की, मेरे रोम रोम में आकर यह कांटे सी खटकी, भटकी हाय कहां धन की सुध, तू आशा पर अटकी, मुझसे पहले तू सनाथ हो, यही विनय इस घर की। फलों के बीज फलों में फिर आए, मेरे दिन फिरे नहाए, गए घन कह कह वार न घिर आए, वे निर्झर झिरे नहाए, मैं भी थी सखी अपने।

0: यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं, जीवन आनंद से बीत रहा था। राजहंसनी के समान प्रियतम के साथ विहार कर रही थी, लेकिन आज ये स्वप्न सा लगता है। मेरे मन का सुख प्रियतम के वियोग में शुष्क हो गया है और मैं निराश हो गई हूँ।
1: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना कि सिद्धार्थ के संबंधी किस तरह सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर विलाप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यशोधरा का पश्चाताप कि अब मैं राजसी जीवन जीकर क्या करूंगी। आज ये भाग यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
0: और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सर विश्वेश्वरैया जी के जीवन के बारे में।
2: भारत के सर्वोच्च इंजीनियर और वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया जी का नाम पूरे देश में आज भी गूंजता है और देश भर में उनके नाम की चर्चा होती है। विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में बंगलूर के निकट मदनहल्ली गांव में हुआ था। उनका गांव सोने की खानों के पास स्थित था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकचैया था। उनके माता पिता स्नेही और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर उनकी माता जी ने उन्हें मानव मूल्यों और नीतियों की अमूल्य शिक्षा देकर उन्हें चारित्रिक गुणों से संपन्न किया।
0: गांव की प्राथमिक शाला में उन्होंने शिक्षा पाई। वे कुशाग्र बुद्धि, योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। अध्यापक उनकी असाधारण बुद्धि से प्रभावित थे। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे बेंगलुरु गए। वहां सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। वे अपने पिता की आर्थिक परेशानियों से परिचित थे, इसीलिए कुछ पैसे कमाने के लिए वे आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाते भी थे। सन 1881 में उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की।
2: सर विश्वेश्वरैया की तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभा और अध्ययन के प्रति उनके उत्साह से प्रभावित होकर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया और छात्रवृत्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश भी कर दी। आर्थिक परेशानियों से कुछ हद तक मुक्त हो जाने से वे अब एकाग्रचित होकर पढ़ाई में लीन हो गए। उनका प्रमुख विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग था।
0: सन 1883 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनकी उपलब्धियों के कारण मुंबई सरकार ने उन्हें सन 1884 में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया।
2: इसके बाद उन्होंने नासिक में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यभार संभाला। उत्साह, जोश और समर्पण की भावना के साथ वे अपना कर्तव्य पालन करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक योग्य इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने सन 1894 में उन्हें सिंध स्थित सखर बराज बांध के निर्माण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा।
0: इसी बीच उनकी पदोन्नति अधीक्षक अभियंता यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर की गई। उन्होंने सखर बांध का निर्माण निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। उस समय इस बांध का निर्माण कार्य बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण समझा जाता था। सरकार को भी उनमें विश्वास था, इसीलिए उन्हें इसके निर्माण का कार्य सौंपा गया था। बांध का निर्माण कार्य ठीक तरह से पूरा हो जाने पर उन्हें भारत का सबसे सक्षम इंजीनियर माना जाने लगा।
2: इसके बाद उन्होंने वडोदरा, कराची, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, नागपुर और अन्य नगरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और उन्हें शीघ्रतापूर्वक पदोन्नतियां मिलने लगी। सन 1906 में सरकार ने उन्हें अदन में जल आपूर्ति सुविधा का अध्ययन करने के लिए भेजा। वहां उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति संबंधी परियोजना का अध्ययन किया। उन्होंने अदन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल आपूर्ति का काम शुरू करने पर विचार किया।
0: उनकी सफलता और लगातार हो रही पदोन्नतियों को देखकर उनके साथी इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे। इससे वहां का माहौल खराब होने लगा था। सर विश्वेश्वरैया ने इस माहौल से मुक्त होने का निर्णय किया और सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें उनके कार्य के लिए पूरा श्रेय दिया। हालांकि उन्होंने पेंशन के लिए आवश्यक सेवा वर्ष पूरे नहीं किए थे, फिर भी सरकार ने उन्हें पूरी पेंशन प्रदान करने का निर्णय किया।
2: त्यागपत्र देने के बाद वे शीघ्र ही यूरोप चले गए। इसी बीच हैदराबाद के निजाम ने उनको बुलवाया। निजाम ने सर विश्वेश्वरैया से मुसी नदी पर बांध बनाने का अनुरोध किया। इस नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण भारी विनाश होता था। चूंकि ये परियोजना जन कल्याण के लिए थी, इसीलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसी परियोजनाएं विकसित की जो मुसी और ईसा नदियों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त थीं। इन परियोजनाओं को उन्होंने ठीक समय पर पूरा किया। परिणाम यह हुआ कि मकानों, माल, कृषि और मानव जीवन की बड़े पैमाने पर होने वाली क्षति रुक गई। पानी की नियमित आपूर्ति से कृषि में भी वृद्धि हुई। यह कार्य पूरा हो जाने पर मैसूर के राजा कृष्णराज ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्हें राज्य का मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया।
0: इस पद पर वे 3 वर्ष तक रहे। उनके कार्य से खुश होकर महाराजा ने उन्हें अपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया। उन्होंने मैसूर में 6 साल तक सेवा की। सर विश्वेश्वरैया ने कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया और मैसूर के विश्वविख्यात वृंदावन उद्यान का निर्माण किया। 6 साल की अवधि के अंदर उन्होंने मैसूर को एक विशिष्ट श्रेणी के नगर के रूप में विकसित कर दिया।
2: उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और मैसूर स्टेट बैंक की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भद्रावती आयरन वर्क्स, सीमेंट फैक्ट्री, कागज उद्योग, चंदन तेल उद्योग, साबुन उद्योग आदि स्थापित करके औद्योगिक प्रगति की दिशा में भी अपना योगदान दिया। इस तरह उद्योग क्षेत्र में सर विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया।
0: उन्होंने आधुनिक वास्तुकला और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और इन विषयों का अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से मैसूर राज्य के दीवान पद से त्याग पत्र देकर देश विदेश में भ्रमण करने का निर्णय किया।
2: उन्होंने अनुभव किया कि अन्य देशों की तुलना में पराधीन भारत बहुत पीछे है। उनके वापस आने के बाद उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए अंग्रेज सरकार ने उनको अनेक समितियों का सदस्य नियुक्त किया। इस बीच भद्रावती आयरन वर्क्स को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मैसूर के महाराजा के अनुरोध पर उन्होंने उस कारखाने का कार्यभार संभाला और उसे ठीक किया, और इसी कारण जमशेद जी टाटा ने उनको जमशेदपुर आमंत्रित किया और उन्हें टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनाया। वहां उन्होंने सन 1955 तक अपनी सेवाएं प्रदान की।
0: सर विश्वेश्वरैया केवल एक सुयोग्य और समर्थ इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दिया। इसी विषय पर उन्होंने सन 1934 में एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा हुई। उनकी लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं रिकंस्ट्रक्शन इंडिया, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 1934 में प्रकाशित हुई, प्रॉस्पर्टी थ्रू इंडस्ट्री, ये पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई, और मेमोरीज ऑफ माय वर्किंग लाइफ, ये पुस्तक 1960 में ही प्रकाशित हुई।
2: श्रोताओं, ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने भी उनको मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की। उन्हें देश भर से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। आजादी के बाद सन 1955 में उन्हें भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया और उनसे 1 सप्ताह तक ठहरने का अनुरोध किया। पर सर विश्वेश्वरैया ठहरे अनुशासन प्रिय व्यक्ति। उनका यह विचार था कि किसी आमंत्रित व्यक्ति को मेजबान के यहाँ 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए।
0: 15 सितंबर सन 1961 को वे पूरे 100 वर्ष के हो गए थे। उनकी जन्म शताब्दी सार्वजनिक और निजी रूप में बहुत धूमधाम से मनाई गई। उस दिन जब उनसे उनके दीर्घ जीवन के रहस्य के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका रहस्य उनकी समयबद्धता और क्रोध पर उनके नियंत्रण में छिपा हुआ है।
2: उनकी जन शताब्दी के अवसर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, विश्वेश्वरैया बोलते कम हैं और काम अधिक करते हैं। इस महान वैज्ञानिक ने 14 अप्रैल 1962 को अंतिम सांस ली। हम भारत के इस महान वैज्ञानिक और इंजीनियर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हमारे महान वैज्ञानिक, अब यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद बंबई से जहाज में बैठे और कोलंबो, हांगकांग, कैप्टन तथा जापान के रास्ते प्रशांत महासागर पार कर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कनाडा के बैंकवर में पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी देखा, सुना, जाना, समझा था, उसे पत्रों के द्वारा विभिन्न लोगों को बताया। वे रास्ते में जिन देशों में उतरे, वहां के लोग, समाज, धर्म तथा राजनीति को उन्होंने बड़े गौर से देखा था और समझा था। कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी और कुछ हास्यपद लगी। बैंकॉक से उनकी रेल यात्रा शुरू हुई। सफर लंबा था। 23 जुलाई को वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से पूर्व की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल रॉकी पर्वतमाला पार करनी पड़ी और बीच में पड़ाव था कनाडा का विनिपेग नगर। वहां से वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और तारीख थी 30 जुलाई सन 1893।
1: महानगर शिकागो विशाल सागर सम मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। विश्व मेले के उपलक्ष में वहां विशाल जन समागम हुआ था। स्वामी जी जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने देश देशांतर से आए लोगों की भीड़ देखी, पर कोई भी परिचित चेहरा नजर नहीं आया। अनजान शहर में अपने सामान के साथ वो परेशान थे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी निश्चित ना था। इधर उन्हें नया जानकर कुली भी उन्हें ठग रहा था। अजीब गरीब पोशाक पहने इस विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति को देख कोई हंसी उड़ाता, कोई ताली बजाता और दुष्ट लड़कों का दल पीछे लगकर उन्हें तरह तरह से तंग करता रहा। ऊपर से भूख और ठंड, आखिरकार किसी होटल में ठहरना ही उन्हें उचित लगा, पर होटल का खर्च उनके हिसाब से अत्यधिक था।
0: शिकागो में वे 12 दिन रहे थे। पहुंचने के दूसरे ही दिन वे घूम घूम कर विश्व मेला देखने लगे। वहां विभिन्न देशों की शिल्प रचनाएं तथा कला कौशल का समावेश था। दिन भर वे मेले में घूमकर शाम को थक हार कर होटल वापस आते और अगले दिन फिर घूमने निकल पड़ते। वहां के ऐश्वर्य का प्रदर्शन और वहां की सफाई व्यवस्था वे सब कुछ देखते और उससे कुछ सीखते।
1: परंतु स्वामी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि अनजान लोग भी उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते। इन कुछ दिनों में स्वामी जी के साथ जिन लोगों की पहचान हुई, उनमें से दो का उल्लेख उनके 20 अगस्त के पत्र में मिलता है। उस पत्र में शिकागो के अपने अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं।
2: वहां मैं प्रायः हर रोज मेला देखने जाता था। वो एक विराट आयोजन है। उसे ठीक ढंग से देखने में कम 10 दिन लगते हैं। वरदा राव ने जिस महिला से मेरा परिचय करा दिया था, वे और उसके पति शिकागो समाज के बड़े गणमान्य लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा बर्ताव किया, परंतु यहाँ के लोग जो विदेशियों का सत्कार करते हैं, वो केवल औरों को दिखाने के लिए है। आर्थिक सहायता के समय प्रायः सभी मुंह मोड़ लेते हैं। इस वर्ष यहां भारी अकाल पड़ा है। व्यापार में सभी को नुकसान हो रहा है।
1: शिकागो में हुई एक विचित्र घटना का स्वामी जी ने उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि इस बीच स्वामी जी ने अनेक लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था।
2: हाल में शिकागो में एक बड़ा तमाशा हुआ। कपूरथला के राजा यहाँ पधारे थे और शिकागो समाज के कुछ लोग उन्हें सम्मान दे रहे थे। मेले में राजा के साथ मेरी मुलाकात हुई, पर वे तो अमीर आदमी ठहरे, मुझ फकीर के साथ बातचीत क्यों करते। उधर एक धोती पहने हुए महाराष्ट्री ब्राह्मण कागज पर नाखून के सहारे बनी तस्वीरें मेले में बेच रहा था। उसने अखबारों के संवाददाताओं को उस राजा के विरुद्ध तरह तरह की बातें कह दी थी। उसने कहा था कि आदमी गरीब वर्ग का है, ये राजा लोग क्रीतदास के समान होते हैं और बहुधा ये दुराचारी होते हैं आदि आदि। और यहाँ के सत्यवादी संपादकों ने, जिनके लिए अमेरिका मशहूर है, इस आदमी की बातों को कुछ महत्व देने के लिए अगले दिन के अखबारों में स्तंभ पर स्तंभ रंग डाले, जिसमें उन्होंने भारत से आए ज्ञानी पुरुष का अर्थात मेरा वर्णन किया और मेरी प्रशंसा के पुल बांधकर मेरे मुख से ऐसी कल्पित बातें निकलवा डाली जिन्हें मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन सब बातों को उन्होंने मेरे मुख से निकला हुआ बता दिया। इससे शिकागो समाज को ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने तुरंत राजा का परित्याग कर दिया। इन मिथ्यावादी संपादकों ने मेरे माध्यम से मेरे ही एक देशवासी को आघात पहुंचाया। खैर, इससे यह भी समझ में आ जाता है कि इस देश में धन और उपाधियों की चमक दमक की अपेक्षा बुद्धि का सम्मान अधिक है।
3: संवाददाता सचमुच स्वामी जी से आकृष्ट हो गया था। उनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए उसने मेले में उनसे बातचीत भी की थी। होटल के मालिक से भी स्वामी जी के बारे में जानकारी जुटाई थी। मेला भूमि में अनेक लोगों से उनकी बातचीत होती थी, पर स्वामी जी को वहां कोई मित्र ना मिला। फिर आर्थिक सहायता का तो कहना ही क्या, परंतु एक बात का उन्हें पूरा विश्वास था कि जब विधाता ने उन्हें यहां भेजा है तो वे ही उनके लिए मार्ग बना देंगी।
1: एक दिन स्वामी जी धर्म महासभा के बारे में पूरी जानकारी लेने वहां के सूचना केंद्र में गए। उन्हें जब सूचना मिली कि धर्म महासभा तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगी तो वो हतप्रभ रह गए। उन्हें और भी जानकारी मिली कि उपयुक्त परिचय पत्र आदि के ना होने पर उस सभा में भाग नहीं लिया जा सकेगा और प्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन करने की तारीख भी निकल चुकी है।

0: भंगनी निवेदिता ने इसी प्रसंग पर लिखा है,
1: भक्तों के असीम श्रद्धापूर्ण मन में ये बात कभी उदित ही नहीं हुई कि मानव जाति के लिए जो असंभव है वे ऐसा ही कुछ दावा कर रहे थे। उन लोगों ने सोचा था कि विवेकानंद का केवल वहां पहुंच जाना ही आवश्यक है और उपस्थित होते ही उन्हें सारे सुयोग अवश्य मिल जाएंगे। अपने शिष्यों के समान ही स्वामी जी भी जागतिक रीति नीतियों के संबंध में बड़े अनजान थे और एक बार जब उन्हें विश्वास हो गया कि इस कार्य के लिए वे दैवी रूप से निर्धारित किए गए हैं, तो उन्हें अपने पथ में कोई भी बाधा नहीं दिखाई पड़ी। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आकर जब विश्व के शक्ति एवं ऐश्वर्य के दृढ़ रक्षित द्वार में प्रवेश करने हेतु उन्होंने पांव बढ़ाए, तो उनके साथ कोई उचित परिचय पत्र न था और न ही किसी ने उनके बारे में घोषणा की। उन दिनों भारतीय समाज की पूर्ण संगठनहीनता का क्या ये निश्चित प्रमाण नहीं है?
0: इधर भक्तों द्वारा दिया गया धन भी शीघ्रता से समाप्त हो रहा था। होटल और खाने पीने का खर्च अत्यधिक था। अपने को संकट में समझकर उन्होंने 2 अगस्त को आला सिंह के नाम एक पत्र लिखकर मद्रास के भक्तों को सूचित किया।
2: यहाँ पर अपरिहार्य व्यय भी मेरे लिए अत्यधिक है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे 170 पौंड के नोट और 9 पौंड नकद दिए थे। अब 130 पौंड ही बचे हैं। प्रतिदिन औसतन 1 पौंड खर्च होता है। यहाँ के एक चुरुट की कीमत ही हमारे यहाँ के 8 आने हैं। अमेरिका वासी इतने धनी हैं कि वे पानी के समान पैसे बहाते हैं और इन्होंने कानून बनाकर सभी चीजों का दाम इतना अधिक रखा है ताकि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह उनके स्तर तक ना पहुंच सके। यहां आने के पूर्व मैं जो सुनहरे स्वप्न देखा करता था वे अब टूट चुके हैं। यहां मुझे अति विषम परिस्थितियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से वापस चल दूं, परंतु मैं दृढ़ संकल्प हूं और मुझे भगवान का आदेश मिला है। मुझे नहीं दिख पड़ता तो ना सही, पर उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं। चाहे मरूं या जीवित रहूं, उद्देश्य पर अटल रहूंगा।
3: उनका लक्ष्य अटल रहा, विश्वास भी अटल था, परंतु वास्तविकता से आंखें मूंद लेने पर काम नहीं चलता। इस बंधु रहित शहर में बिना पैसे के रहना संभव नहीं था। शुभ चिंतकों ने उन्हें अमेरिका के पूर्वी छोर में स्थित बोस्टन नगर में चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां व्यय अपेक्षाकृत कम होगा। वे रेल से बोस्टन रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक सहृदय मित्र मिल गई। वे थी मिस कैथरीन एबर्ट सैनबॉर्न। वे मैसाचुसेट्स प्रांत के ब्रीजी मिडोस नामक कृषि क्षेत्र की मालकिन थी। कैथरीन सैनबॉर्न से मुलाकात के बारे में स्वामी जी ने लिखा,
2: इस समय मैं बोस्टन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला का अतिथि हूँ। इनके साथ रेलगाड़ी में अचानक भेंट हो गई। इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण दिया। यहाँ रहने से मुझे ये सुविधा है कि मेरा जो हर रोज 1 पौंड के हिसाब से खर्च हो रहा था वो बच जाता है, और उनको ये लाभ होता है कि वे अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आया हुआ एक अद्भुत जीव दिखा रही है। ये सब सहना ही होगा। अब मुझे अनाहार, जाड़ा और अपने अनोखे पहरावे के कारण रास्ता चलते लोगों की खिल्लियां, इस सब के साथ संघर्ष करते रहना होगा। परंतु प्रिय वत्स, ये निश्चित रूप से जान लेना कि कोई भी बड़ा कार्य कठिन परिश्रम तथा कष्ट स्वीकार के बिना नहीं हुआ है।
0: मिस सैनबॉर्न को यद्यपि स्वामी जी ने वृद्धा कहा था, पर अमेरिका वासियों के अनुसार वे वृद्धा नहीं बल्कि प्रौढ़ा थी। आयु थी 54 वर्ष। उनमें यथेष्ट उत्साह था और स्वामी जी को इधर उधर ले जाने में उन्हें मजा आता था। समाज में वक्ता और लेखिका के रूप में उनकी ख्याति थी। अतः उनके सहारे स्वामी जी को उस अंचल में एक शिक्षित और

0: प्रतिष्ठित प्राध्यापक मिल गया था। इन्हीं की सहायता से वे डॉक्टर राइट से परिचित हुए और इसी सूत्र से उन्हें धर्म महासभा के प्रतिनिधि का स्थान मिला। बोस्टन में रहते समय उन्हें एक महिला प्रतिष्ठान का निमंत्रण मिला। वहां उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति विषय पर भाषण दिया। इसी प्रतिष्ठान के सदस्यगण विधवा और बाद में ईसाई धर्म में दीक्षित पंडिता रमाबाई को वे भारत में समाज सेवा के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे।
1: वहाँ के लोग स्वामी जी का नाम ठीक ठाक उच्चारण नहीं कर पाते थे। लोग उन्हें तरह तरह के विकृत नामों से पुकारते थे। विवेकानंद या केवल कानंद के नाम से वे जाने जाते थे। वहाँ उनकी मुलाकात कैथरीन सैनबोर्न के चचेरे भाई श्री फ्रैंकलिन बेंजामिन से हुई। पहले तो उन्होंने भारतीय सन्यासी को संदेह की दृष्टि से देखा, पर बातचीत करने के बाद स्वामी जी के बारे में उनका मत परिवर्तन हो गया। श्री बेंजामिन बोस्टन के समाज में संवाददाता, लेखक, परोपकारी तथा विभिन्न सभा समितियों के पालक के रूप में परिचित थे। उनका स्वामी जी के प्रति आकृष्ट होना मायने रखता था। स्वामी जी ने अपने 20 अगस्त के पत्र में लिखा था,
2: याद रखना, ये ईसाइयों का देश है और यहाँ किसी अन्य धर्म या मत का प्रभाव मनु नहीं के बराबर है। संसार के किसी भी मतवादी का मुझे लेशमात्र भय नहीं। यहाँ मैं मेरी पुत्र ईसा की संतानों के बीच निवास कर रहा हूँ। प्रभु ईसा ही मेरी सहायता करेंगे। एक बात है, ये लोग मेरा हिंदू धर्म संबंधी उदार मत तथा नाजरत के अवतार के प्रति मेरा प्रेम देखकर खूब आकृष्ट हो रहे हैं। मैं उनसे कहा करता हूं कि गैलीली के उस महापुरुष के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कि जैसे आप लोग ईसा को मानते हैं उसके साथ वैसे ही भारतीय महापुरुषों को भी मानना चाहिए। ये बात वे बड़े आदर के साथ सुनते हैं। अब तक मेरा काम इतना ही बना है कि मेरे बारे में वे कुछ जान गए हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसी रीति से कार्य प्रारंभ करना होगा।
0: उन्होंने वहां के अच्छे रीति रिवाजों की तारीफ करके आगे लिखा कि
2: कल स्त्री कारागार की सुपरिटेंडेंट श्रीमती जॉनसन यहाँ पधारी थी। यहाँ पर कारागार नहीं, सुधारशाला कहते हैं। अमेरिका में मैंने जो अद्भुत चीजें देखी हैं उनमें से ये एक बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। कैदियों के साथ कैसा सहृदय व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका चरित्र सुधरता है और वे लौटकर पुनः समाज के उपयोगी अंग बन जाते हैं। ये सब बातें कितनी अद्भुत हैं, कितनी सुंदर हैं।
1: अमेरिका की व्यवस्थाओं को देखकर वे अपने देश की दुरावस्था के बारे में सोचकर दुखी हो गए। उन्होंने मद्रास के अनुयायियों को लिखा था,
2: ये सब सोचकर जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए। भारतवर्ष में निर्धनों, पतितों और साधारण लोगों के बारे में क्या हम लोग चिंता करते हैं? उनके लिए ना कोई अवसर है, ना बचने की राह और ना ही उन्नति का कोई उपाय। भारत के निर्धनों, पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। क्रूर समाज जो उन पर लगातार चोटें कर रहा है, इसका परिणाम है गुलामी और पशुत्व। चिंतनशील लोग पिछले कुछ वर्षों से समाज की इस दुर्दशा को समझ रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग इसका दोष हिंदू धर्म के मत्थे मढ़ रहे हैं। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य ज्ञात हो गया है। दोष धर्म का नहीं, उल्टे तुम्हारा धर्म तो तुम्हें सिखाता है कि संसार के सभी प्राणी तुम्हारी आत्मा के ही विविध रूप हैं। प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं, वरन दोष उनका है जो हिंदू धर्म के अंतर्भुक्त हो। हुए भी ढोंगी और दंभी हैं, जो परमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्रों का निर्माण करते रहे हैं।
0: लोग कहा करते थे कि स्वामी जी ने अमेरिकी समाज से प्रभावित होकर के विदेशी भावधारा का भारत में प्रचार किया, परंतु स्वामी जी की मौलिकता इस बात में है कि वे तुलना के द्वारा रोग का निदान तथा चिकित्सा का विधान कर लेते थे। अमेरिका व समग्र पाश्चात्य जगत में उस समय तक वेदांत पर आधारित सामाजिक चिंतन अज्ञात था। यह स्वामी जी का ही अवदान है और उस चिंतन को केवल मन में सीमित न रख करके वे उसे कार्य में परिणित करना चाहते थे। अध्यात्म जगत के विचारों के साथ बाह्य जगत के व्यवहारों में कोई तालमेल नहीं रहेगा, यह वे सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें लगता था कि सामाजिक दुर्नीति अत्याचार आदि के लिए धर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए उत्तरदायी है सत्ताधारी शासक वर्ग और धर्माचार्यों की स्वार्थ पर।
1: बोस्टन के उस गांव में मिस सैनबोन का आतिथ्य ग्रहण करने फलस्वरूप यद्यपि स्वामी जी का खर्च घट गया था, तो भी अन्य प्रकार के व्ययों से वे तब भी पीड़ित थे। हमें मालूम है कि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। इसके बारे में उन्होंने अपने पत्र में लिखा था,
2: जाड़ों का मौसम आ रहा है, मुझे सब प्रकार के गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी और यहाँ के निवासियों की अपेक्षा हम लोगों को अधिक कपड़ों की जरूरत पड़ती है। इस गांव से मैं कल बोस्टन जा रहा हूँ, वहाँ एक बड़े महिला क्लब में मुझे व्याख्यान देना है। बोस्टन जाकर पहले मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। वहाँ यदि मुझे अधिक दिन रहना पड़ा तो मेरी इस अनोखी पोशाक से काम नहीं चलेगा। रास्तों में मुझे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, इसलिए मुझे काले रंग का एक लंबा कोट पहनना होगा। केवल व्याख्यान देने के समय पहनने हेतु मैं एक गेरुआ पहनावा और पगड़ी रखना चाहता हूँ। ये पत्र तुम्हारे पास पहुँचने के पूर्व ही मेरे पास मात्र 60-70 पौंड बचे रहेंगे, अतः कुछ रुपए भेजने का भरसक प्रयास करना। अगर यहाँ पर कुछ प्रभाव डालना है तो इसके लिए कुछ दिन ठहरना आवश्यक है। यहाँ मुझे कुछ काल रहना होगा। इतने प्रयास के बाद मैं सहज ही इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहता। जितना भी हो सके तुम लोग मेरी मदद करो, और यदि ना भी कर सके तो भी मैं आखिर तक प्रयास करके देखूंगा। यदि तुम रुपए भेजकर मुझे कम से कम 6 महीने यहां रख सको तो आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मैं भी जो कोई सहारा सामने मिल रहा है उसी के सहारे तैरने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं अपने निर्वाह के लिए कोई उपाय ढूंढ सका तो तुरंत तुम्हें तार भेजूंगा।
0: उस समय स्वामी जी की हालत बड़ी ही चिंतनीय तथा भयावह थी। दर्जी के पास अपने कोट का ऑर्डर देकर के लौटने के बाद उसी पत्र में वे आगे लिखते हैं,
2: अभी अभी मैं दर्जी के पास गया था, जाड़े के कुछ कपड़ों के ऑर्डर दे आया। उसमें 300 रुपए या उससे अधिक खर्च आएगा, फिर भी ये बहुत अच्छे कपड़े ना होंगे, कुछ बेहतर से दिखेंगे बस। यदि तुम लोग मुझे यहाँ रखने के लिए रुपए ना भेज सको तो इस देश से लौट आने के लिए कुछ रुपए भेज दो। इस बीच यदि मेरे अनुकूल कोई शुभ

0: कर मद्रास में व्याख्यान देते समय उन्होंने कहा था,
1: मैं अमेरिका तो पहुंच गया पर मेरे पास रुपए बहुत कम थे और वे शीघ्र ही समाप्त हो गए। इधर जाड़ा भी आ पहुंचा और मेरे पास केवल गर्मी के वस्त्र थे। उस घोर शीत प्रधान देश में सूझ नहीं रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यदि मैं मार्ग में भिक्षा मांगने निकलता तो जेल भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास केवल कुछ ही डॉलर बचे थे। मैंने अपने मद्रास वाले मित्रों के पास तार भेजा। ये बात थियोसोफिस्टों को मालूम हो गई और उनमें से एक ने लिखा, अब ये शैतान शीघ्र मर जाएगा, ईश्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ।

0: चलो बलाटली।
1: प्रतिनिधि बनने पर उन्हें अपने खर्च से काफी दिनों तक शिकागो में रहना पड़ा। यह सब सोचकर वे बोस्टन गए थे, पर तब भी विदेश में कार्य करने की आशा उनके मन में थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था,
0: पहले मैं अमेरिका में प्रयत्न करूंगा, यहां विफल होने पर इंग्लैंड में, और यदि वहां भी सफल न हुआ तो भारत लौटाऊंगा और भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करूंगा।
1: धर्म महासभा में शामिल न हो पाने के दुख से वे निराश जरूर हो गए थे, पर अमेरिका में अपनी भावी सफलता का आभास उन्हें शीघ्र ही मिलना आरंभ हो गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है। गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है। चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटता ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए है की अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5। यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं है। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर। और मैं
3: एक, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा,
2: है?
3: मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली। भाई उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए। अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे पुणे चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रे भाई, चुप रे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये
2: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो, सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए?
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ।
0: हुँ।
1: शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांस हुए। चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओ, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुन लो सुन, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के।
0: अब जलाओ।
3: जल गया, जल जल जल गया। ये देखो, ये देखो लॉ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट।

0: तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
1: कैसे बैलेंस करना है?
0: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का एक पैकेट कम आएगा घर में।
1: जी?
0: साल भर
1: है?
0: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
1: पर काम कैसे चलेगा?

0: इतनी राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
1: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
1: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ, अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
1: हाँ, पढ़ो। देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
1: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
1: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
0: हाँ।
1: अच्छा, नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
1: वाह,
0: आगे
1: बढ़ो। नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
1: सिंपल। ओके, एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
1: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
1: अच्छा,
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर

0: सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली, नारंगी व एक जैसी ना हो।
1: अच्छा,
0: समझी?
1: हाँ,
0: है
1: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली, चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक
1: अच्छा,
0: जैसी
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर
1: पर आ जाने।
0: पर आ जाने दें।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: इससे गैस की बचत होगी।
1: वाह।
0: और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
1: नहीं, मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म
1: हाँ,
0: पत्नी जी,
1: जरूर जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है
1: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
1: नहीं,
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
1: नहीं,
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े,
1: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे, पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
1: इजाजत
0: इजाजत
1: नहीं
0: नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहु भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
2: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
3: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
4: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
3: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
4: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
3: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
4: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
3: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
4: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
3: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
4: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
3: हाँ?
4: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
3: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
4: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
3: क्या?
4: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह प्यू प्यू करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
3: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
4: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
3: भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
1: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रीतु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रीतु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रीतु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
4: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
3: क्या?
4: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अरे,
4: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
3: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक
4: ये। अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना, फिर ना क्या?

0: एसएमएस?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें? कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे। मेरी ये ही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
0: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान? वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
1: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
0: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार। बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
1: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब। प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए आप। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है। जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
0: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूँगा क्या, क्या, क्या, क्या?
1: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
0: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है? एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
1: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है। मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच, तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
0: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
0: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
1: हाँ, और क्या। अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठ कर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
0: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
2: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
1: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
0: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना।
1: बाय
2: बाय।
3: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
0: यार चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें भी ना जाने चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे, जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या है यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
3: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
0: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं, इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई, कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं, तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा, रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट, तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
3: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया, वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है, इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
3: <स्थाथ> प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला, अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए, आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
5: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ, क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
5: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
5: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
5: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
5: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
5: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
6: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
5: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
5: हाँ, वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ।
4: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
5: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
5: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
5: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
5: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल
5: है?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
5: हाँ
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
5: हाँ।
4: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
5: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
4: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
5: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
4: बाय बाय।
3: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली, नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
5: हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है? इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेडिंग नहीं। अब प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो। जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है। जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है, आ रही है फीलिंग, आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो
4: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
5: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
4: अच्छा यार एक काम कर तू।
5: बोल।
4: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूं तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
5: हाँ।
4: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
5: आता हूं भाई, आता हूं। कौन टपक पड़ा यार?
0: अरे तुम, अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी कि
1: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं। सोचना चाहिए था मुझे, आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
5: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
1: मैं तो प्राण दे दूं पतिदेव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
5: थैंक गॉड।
3: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
5: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
1: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
5: क्या
1: अरे क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
0: क्या कह रही हो?
1: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
0: क्या कह रही हो?
1: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम। तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
0: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
1: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
0: अरे तुम
1: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में, तुम खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
0: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
1: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
0: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
1: और ये आगे भी तो देखो।
0: अरे
1: रहन दो बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
0: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
1: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
0: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
1: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
0: अरे यार,
1: और आगे ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
0: अरे क्या
1: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
0: अरे यार
1: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए
0: तुमने। अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
1: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
0: अरे जाने मन क्या।
1: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
0: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो तुम अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
4: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
1: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत जी जी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो।
4: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
1: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
4: 100% सच कह रहा हूँ भाभी। आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
1: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
3: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होती है, जो कि रात्रि के 10 बजे तक निरंतर जारी है। हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी भूला भाई देसाई के जीवन पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय है साइबर क्राइम। जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार और इनसे बातचीत करेंगी डॉक्टर रानी रायकवार। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम में आज हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दिया है दीपक नेमा और स्वाति गिरी ने। रात्रि के 8 विगत दिवस भोपाल में आयोजित संभावना कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा और साथ ही आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 8:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम में आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ सुनेंगे। रात्रि के 9 कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जिसमें आज हम सर विश्वेश्वरिया के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे और 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 103 से वाचन। ऋषि है कुत्स आंगिरस, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
4: तत्त इंद्रियम परमम पराचैर धारयन्त कवयः पुरेदम् क्षमेदमन्यद्दिव्य न्यदस्य समी पृच्यते समनेव केतुः। हे इंद्रदेव, आपकी उस पराक्रम शक्ति को क्रांतदर्शी ज्ञानवानों ने प्राचीन काल से ही शत्रुओं को पराजित करने वाले कूर्मों के रूप में धारण किया था। आपकी दो प्रकार की शक्ति धाराएं हैं। एक धारा तो भूलोक में अग्नि रूप में है और दूसरी स्वर्ग लोक में सूर्य प्रकाश के रूप में है। युद्ध स्थल पर उल्टी दिशाओं से आती हुई दो पताकाओं की तरह ये दोनों शक्ति धाराएं अंतरिक्ष लोक में परस्पर संयुक्त होती हैं। सधारयत पृथ्वीम पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपह ससर्ज अहन्न हिम भिनद्रौहिणम विहन्यव्यंसह मघवा शचीभिः। उन इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया। वज्र रूपी तीक्ष्ण शक्ति धाराओं से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए अहि रौहिण और व्यंसादि दैत्यों का संहार किया, जिससे पुनः अवरुद्ध जलधाराएं प्रवाहित हुईं। स जातु भर्मा श्रद्धान ओजह पुरो विभिन्दनच्चरद्वी दासी ही विद्वान वज्रिंदस्यवे हेति मस्यार्यम सहो वर्धया द्युम्नमिंद्र। विद्युत के समान तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर इंद्रदेव आत्मविश्वास के साथ आक्रमण द्वारा दस्युओं के नगरों को ध्वस्त करते हैं तथा निर्विघ्न होकर विचरण करते हैं। हे ज्ञान संपन्न वज्रधारी इंद्रदेव, इस स्तोता के शत्रुओं पर भी आयुध फेंकें और आर्यों के बल तथा कीर्ति को बढ़ाएं। तदुचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यम मघवा नाम बिभ्रत उपप्रयंदस्यु हत्याय वज्री यद्ध सूनुः श्रवसे नाम दधेम। शक्ति पुत्र वज्रधारी इंद्रदेव ने शत्रु के संहार के लिए आगे बढ़कर जो नाम कमाया, उस प्रशंसनीय मघवा नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया। तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टम श्रदिंद्रस्य धत्तन वीर्याय सगा अविन्दत्सो अविन्द दश्वान्स ओषधीहि सो अपह सवनानि। उन इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से गौओं, अश्वों, औषधियों, जलों और वनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्यों, आप इंद्रदेव के इन अत्यंत पराक्रमपूर्ण कार्यों को देखें और उनकी अद्भुत शक्ति के प्रति आत्मविश्वास जगाएं। भूरि कर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम य आद्रित्या परिपंथीव शूरो यज्वनो विभवजन्नेति वेदः। जो शक्तिशाली इंद्रदेव लालची दुष्टों लुटेरों द्वारा एकत्रित किए गए धनों का तथा यज्ञीय कर्मों से रहित राक्षसी वृत्ति से युक्त दैत्यों के धनों का हस्तांतरण करके ज्ञानियों को सम्मानित करते हैं, अर्थात दुष्ट जनों से प्राप्त धन को श्रेष्ठ जनों में वितरित कर देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले महान दाता और सत्य बल संपन्न इंद्रदेव के लिए हम सोम तैयार करें। तदिंद्र प्रेव वीर्यम चकर्थ यत् ससंतम वज्रेणा बोधयोहिम अनुत्वा पत्नीर हृषितम वयश्च विश्वे देवासो अमदन्ननुत्वा। हे इंद्रदेव, आपने सोते हुए वृत्र को वज्र के प्रहार से जगाया, अर्थात पराभूत किया। वस्तुतः यह आपका परम शौर्य है। ऐसे में आपको आनंदित देखकर सभी देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अति हर्ष अनुभव किया। शुष्णम पिप्रुम कुयवम वृत्रमिंद्र यदावधीर वी पुरह शंबरस्य तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति ही सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। हे इंद्रदेव, जब आपने शुष्ण पिप्रु कुयव और वृत्र का हनन किया और शंबरासुर के गढ़ों को धूल धूसरित किया, तो मित्र, वरुण, आदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्यलोक हमारे उत्साह को भी संवर्धित करें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 103 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। दूसरों का मान सम्मान करने से हमारे अंदर विनय और श्रेष्ठ गुण विकसित होते हैं। जब हम दूसरों के सद्गुणों और उनकी महानता को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर यश, आयु, ज्ञान, बल और विशेष रूप से आत्मबल बढ़ता है। ये भावना हमें अहंकार से दूर रखकर सत्य के प्रति झुकने की सीख देती है। इसीलिए दूसरों को सम्मान देना अत्यंत श्रेष्ठ गुण माना गया है। ऐसे ही सुंदर विचारों के साथ शुरू करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

सकारात्मक विचार और मजबूत संकल्प की मदद से सफलता जरूर मिलती है। यही सोच रखने से जीवन में उपलब्धियां और प्रकृति का आशीर्वाद मिलने लगता है। हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहे। मन के भीतर छिपे डर, भ्रम, शक और बेचैनी को दूर करें। तनाव से दूर रहकर ही हम अदृश्य शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं।

सदैव आशावादी रहें और उत्साह बनाए रखें। सकारात्मक सोच जीवन को सही दिशा देती है और कठिनाइयों को सरलता से दूर करती है। हमेशा ये विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है।

छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हमें रुकना नहीं चाहिए। कठिनाइयां आती है पर वे हमें मजबूत बनाती है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

हमें सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर जीवन की दिशा सही है तो व्यक्ति की दशा भी सुधरती जाती है। सफलता और सौभाग्य पाने के लिए आवश्यक है कि हम सही मार्ग का चयन करें और उस पर दृढ़ता से चलते रहें।

नकारात्मक विचार जैसे ये संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे नकारात्मकता से बचें। हर चुनौती को अवसर की तरह देखें और शुभ संकल्पों के साथ आगे बढ़ें। आशावादिता ही सफलता की कुंजी है।

सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही कुछ हासिल नहीं होता, असफलता से सीखकर काम करने से ही सफलता मिलती है।

साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है, विद्वान व्यक्ति में दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करने का गुण होता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बदला लेने की भावना रखते हैं।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी भूला भाई देसाई पर केंद्रित है।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में लाल किला ट्रायल का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास साक्षी है कि दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज भारत की आजादी के लिए आगे बढ़ी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों और खराब मौसम को देखते हुए उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और नवंबर सन 1945 से लेकर मई 1946 तक आजाद हिंद फौज के अनेक अधिकारियों पर मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला, जो लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध है। ये मुकदमा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला था। इस ऐतिहासिक मुकदमे की अनुगूंज से पूरा भारत आंदोलित हो उठा। इसी मुकदमे के दौरान जन जन की जुबान पर नारा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज, तीनों की हो उम्र दराज। इस मुकदमे और नारे ने जैसे जागरण का एक मंत्र फूंक दिया था, मानो ये कोई मुकदमा नहीं स्वाधीनता का कोई आंदोलन हो। इसने देश की आजादी के लिए लड़ रहे अनगिनत नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे सुप्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई। मुकदमे के दौरान जब वो लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। उनकी दलीलों से पूरे भारत में जैसे देशभक्ति का एक ज्वार सा उठ खड़ा हुआ था। भूला भाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड़ में 13 अक्टूबर सन 1877 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा वलसाड़ के अवाबाई स्कूल में और फिर आगे की पढ़ाई भारदा हाई स्कूल बॉम्बे में हुई, जहां उन्होंने सन 1895 में अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी दौरान उनका विवाह इच्छाबेन के साथ संपन्न हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ धीरू भाई। आगे की पढ़ाई के लिए भूला भाई देसाई ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया तथा अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें वर्ड्सवर्थ पुरस्कार और इतिहास तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पहला स्थान प्राप्त करने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। पढ़ाई के बाद वो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। अध्यापन के दौरान ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की तथा सन 1905 में बॉम्बे उच्च न्यायालय से वकालत प्रारंभ की। वे वकालत के द्वारा ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। बहुत जल्द अपने शहर और फिर देश भर में एक मुखर और योग्य वकील के रूप में वो विख्यात हो गए।

वकालत करते हुए ही भूला भाई देसाई का रुझान देश की राजनीति की ओर हुआ। वो कुछ लोगों के संपर्क में आए। देश में स्वराज की आवाज उठ रही थी। भूला भाई देसाई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग में शामिल होने के साथ की। साइमन कमीशन के विरोध के समय वो सामने आए। जून सन 1928 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया। भीषण अकाल के बाद भी प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। सरदार पटेल की अगुवाई में भूला भाई देसाई ने बहुत मजबूती के साथ किसानों के मामले का प्रतिनिधित्व किया और अंततः विवश होकर ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा। 22% की लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। भूला भाई देसाई गांधी जी के विश्वस्त और प्रिय सहयोगी हो गए थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु देश भर में लगातार आंदोलन हो रहे थे। गांधी जी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता का मंत्र बना दिया था। भूला भाई देसाई को भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ब्रिटिश राज के विरोध का एक प्रभावशाली माध्यम लगता था। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर सन 1932 में उन्होंने स्वदेशी सभा का गठन किया और अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगभग 80 कपड़ा मिलों को इस महाअभियान में शामिल कर लिया। सभी मिल मालिकों को विदेशी माल न खरीदने के लिए उन्होंने तैयार किया। स्वदेशी सभा की गतिविधियां अंग्रेजों की आंख की किरकिरी थी, इसलिए ब्रिटिश सत्ता द्वारा स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन भूला भाई देसाई भला कब रुकने वाले थे। स्वदेशी सभा की गतिविधियों को देखते हुए सन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जेल के कठिन जीवन को सहते हुए भूला भाई देसाई बीमार रहने लगे। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आगे चलकर उन्हें रिहा किया गया और अपने इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाना पड़ा। सन 1934 में वो गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के मुद्दे का उन्होंने विधानसभा में पुरजोर विरोध किया। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण ही वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले पाए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस दौरान भूला भाई देसाई सक्रिय रहे। अंग्रेज सरकार पर राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के साथ साथ एक आदर्श भारतीय गठबंधन बनाने के उद्देश्य से उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से भी बातचीत शुरू की थी। जब आजाद हिंद फौज के तीनों अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तब भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक रक्षा समिति बनाई गई। तेज बहादुर सपूर के नेतृत्व में यह रक्षा समिति कार्य कर रही थी। जब लाल किला ट्रायल शुरू हुआ तो तेज बहादुर सपूर की अस्वस्थता के कारण भूला भाई देसाई ने इस मुकदमे की पैरवी की। ये एक ऐतिहासिक मुकदमा था। भूला भाई देसाई ने 3 महीने लगातार काम किया और उन्होंने अपने तर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों ने एक अनंतिम सरकार के आदेश के तहत अपने देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हथियार थामा, जो उनका हक था। उनका पहला तर्क था कि आजाद हिंद फौज एक उचित रूप से गठित और स्वशासित सेना थी, जिसे भारतीय अधिकारी संचालित कर रहे थे, जिसका अपना अनुशासनात्मक कोड, रैंक, वर्दी और चिन्ह था। ये सिर्फ जापान द्वारा संचालित कोई ग्रुप नहीं था। भूला भाई देसाई ने यह तर्क दिया कि आजाद हिंद फौज स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार की ओर से लड़ रही थी और आजाद हिंद सरकार को 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। इसके बाद ही उसने ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा की। इसका अर्थ था कि एक युद्धरत राज्य के रूप में आईएनए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। इस तरह भूला भाई देसाई ने राजद्रोह के तर्क को घुमाकर उस बिंदु पर ला खड़ा किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक गुलाम देश के पास एक विदेशी शासक से युद्ध कर उसे बाहर निकालने का अधिकार प्राप्त है। भूला भाई देसाई के अकाट्य तर्कों का यह प्रभाव रहा कि तीनों आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त कर वेतन भत्ते जब्त करने के आदेश दिए गए तथा किसी सुदूर जगह भेजने की सजा सुनाई गई। उनके तर्कों ने न केवल तीनों को फांसी की सजा से बचा लिया, बल्कि उनकी पैरवी के बहाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी हेतु किए गए कठिन प्रयासों की जानकारी जन जन तक पहुंच गई। ये मुकदमा जैसे आजाद हिंद फौज का प्रचार मंच बन गया। मुकदमे के दौरान पूरे भारत में आजादी के लिए फिर से तीव्र आवेग पैदा हुआ। लोग देश पर मर मिटने को तैयार थे। जगह जगह अंग्रेजी राज के विरुद्ध धरने, प्रदर्शन हुए, एकता की सभाएं हुईं और अंग्रेज जान गए कि अब इस देश में और टिकना उनके लिए संभव नहीं है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की भोर देखने के लिए भूला भाई देसाई नहीं थे। 6 मई सन 1946 को वो अनंत में विलीन हो चुके थे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी भूला भाई देसाई को समर्पित थी। सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजितियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं, बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।
0: पर
1: ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा।
0: किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों से का 7वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं और इस बार भी हमारे साथ हैं। पूजा जी प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में चुरा भोंका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर दमोह तक पहुँच गया और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े। और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती और दमोह में नरई पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहां अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं।
0: जी, क्या बात।
1: तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है। वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है तो संघर्षशील लोग होते हैं, लड़ाके उसी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है जहाँ समृद्ध सभ्यता हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य पूर्व की ओर से अधिक सेनाएं या लड़ाके भारत की ओर कूच करते हैं और यहाँ पर अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ये प्रकृति का बेसिक अंतर है। इसी प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि रानी दुर्गावती, ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं रही होगी, पर ये आक्रमण अचानक से हुआ था। दूसरी तरफ आसफ खान लंबे समय से अपनी सेना को संगठित कर रहा था, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। इसीलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
0: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी, आगे बढ़े हम और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा? और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खान आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने?
1: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी तो उन्होंने 4 पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
0: जी,
1: और उधर आसफ खान को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहाँ हो गई।
0: जी,
1: तो आसफ खान को पता नहीं चल पा रहा था। उसने कुछ समय तो इंतजार किया और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
0: जी,
1: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2,000 से 3,000 की सेना रानी के पास थी।
0: जी हाँ।
1: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
0: जी हाँ।
1: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी, लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी
0: जी।
1: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
0: वाह।
1: कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को बुलाया और उसे संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहाँ पर करो और मरो की स्थिति है, कोई जाना चाहे तो वापस जा सकता है
0: जी।
1: लेकिन रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने बड़ा काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एकमत होकर युद्ध करने का संकल्प लिया और एकजुट होकर यह स्वीकार किया कि इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा सामूहिक रूप से सभी उसके भागीदार होंगे,
0: जबकि सब जानते थे कि अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।
1: बिल्कुल। अब नरई में रानी की सेना तैयार थी। उधर से सूचना मिल चुकी थी कि आसफ खान की सेना के फौजदार नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद अपनी सेना के साथ नरई के जंगलों में पहुंच रहे थे
0: जी।
1: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा
0: जी।
1: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
0: अच्छा।
1: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
0: तो मतलब कह सकते कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
1: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
0: हाँ।
1: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
0: तो पूजा जी एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे मार गिराया था।
1: जी हाँ, ये देशज तकनीक कह सकते हैं इसको
0: जी।
1: कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस तकनीक से लड़ना जानते थे
0: जी।
1: और कई सारे युद्ध उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि लड़े और जीते भी।
0: ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आख्यान कुछ लोकगीत गाए गए रानी दुर्गावती जी की स्तुति में और ये वहां पर बहुत काम आए युद्ध में, वो क्या थी तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
1: हम अभी तक जब भी सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार में कई सारे लेखक हैं
0: जी।
1: हमने अबुल फजल का नाम सुना, फरिश्ता का, बदायूनी का, बहुत सारे नाम हैं। पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष लिखित इतिहास दरबारी लेखकों द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी दरबारी लेखक लिखते हैं तो वो राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और सामने वाले को बहुत ही निष्कृष्ट भी दिखाया जाता
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती जिसमें कि दरबार में लेखकों को रखकर उनसे इतिहास लिखवाया जाए
0: जी।
1: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता। पर हाँ, अगर हम
0: लोग
1: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं, जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
0: यश को जो पहले जस कहते थे
1: तो खूब सारे आख्यान जस गीत हम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
0: वाह,
1: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी
0: जी।
1: तो गढ़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी
0: जी।
1: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है
0: जी।
1: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो
0: जी।
1: तो एक सेला लोकगीत है
0: जी,
1: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है
0: जी।
1: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण मां जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए।
0: वाह।
1: रण मां जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो।

0: डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है, माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है, माँ दुर्गा अपने हाथों में तलवार लिए रणचंडी हो गई है।
1: वाह पूजा जी, क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप, हमने कई बार ये जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
0: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो समाज का आईना नहीं है, वो अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में।
1: जी।
0: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो,
1: हाँ,
0: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है।
1: जी।
0: और जनता से कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए।
1: जी।
0: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
1: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियां कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति, या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जरूर। अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढें, तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी।
1: जी।
0: अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया,
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई, तो इस पर 4 पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन माँ सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है।
1: जी।
0: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है।
1: जी।
0: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है।
1: जी।
0: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं।
1: जी।
0: और उनके केस लंबे हैं।
1: जी।
0: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और दमक दमक रानी गर्जे फौजी दे ललकार, इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है।
1: जी।
0: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
1: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है।
0: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो, ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
1: याद
0: है।
1: किया जाता है, बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है, लोकगीतों में सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गूंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
0: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है।
1: जी।
0: इस गीत की 4 पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर, फौजी सबे तैयार।
1: वाह क्या बात।
0: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया
1: जी।
0: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं
1: जी।
0: उनकी आंखों से काए अखियन से बरसे अगिया
1: जी।
0: आंखों से आग बरस रही है और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
1: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है। जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है, जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं। लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
0: जरूर।
1: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज का विषय था रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करी संदीप शर्मा ने।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है साइबर क्राइम। जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ शिवेंद्र कुंभकार और इनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर रानी रायकवार।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। टेक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे साइबर अपराध, चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे एक क्लिक पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो आज हमारी ज़िंदगी बन चुका है। केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसके अंदर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना हम अपने फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को जकड़ कर रख लिया है। जी हाँ, कुछ भी काम हो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और इस इंटरनेट ने जहाँ हमें सुविधाएँ दी हैं तो वहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। क्या है साइबर अपराध, चुनौतियां क्या हैं, सुरक्षा कैसे की जाए, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने शिवेंद्र कुंभकार जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, चुनौतियां क्या है, सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
2: आपने मुझे मौका दिया अपने पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
1: जी सर, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और साइबर अपराध बहुत तरीके से देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारी जिंदगी में इतना रच बस गया है कि हम उसके बिना कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्या चुनौतियां आज आपके नज़रिए से देखने मिल रही हैं?
2: देखिए, दोनों तरह से अपन देख सकते हैं। इंटरनेट का होना अपने लिए बहुत फायदेमंद चीज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का हद से ज़्यादा उपयोग कहीं ना कहीं अपनी आंखों को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर्स चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के या कहीं एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रीवियस से अगर कंपेयर करें, बिफोर इंटरनेट आफ्टर इंटरनेट, तो पहली तो बॉडी की हेल्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। पहले जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे, एक जगह बुक में पढ़ते थे या कहीं रिसर्च मटेरियल में पढ़ते थे। अब आज वो चीज़ आपके हाथ में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके चक्कर में आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, कहीं जाते जाते आप फ़ोन चला रहे हैं, कोई सामने वाला गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, रिस्क बढ़ चुका है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही रिस्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो साइबर अपराध इस समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बात करने की तो जो आज़ादी है वो हमें फोन ने दी है, अपराध कहाँ बन जाती है ये बातचीत?
2: देखिए, अपराध यहाँ बन जाती है जहाँ वो बातचीत जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपका ही नंबर है, आपको पता है, मुझे पता है, अब मैं उस नंबर में एक दो डिजिट ऊपर नीचे कर दूं तो एक थर्ड पर्सन का नंबर आ गया।
1: बिल्कुल।
2: अब उससे मैं अगर आपसे जितना फेमिलियर हूं, मैं उस लहजे में बात करूं तो वो तो जानता नहीं है। यहां तक बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल तौर पे हम एक दूसरे से सबको बहुत पहले से जानते हैं, तो अगर कुछ समय आप रिप्लाई नहीं करेंगे हमारा, तो हम आक्रोश में आके आपको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वही चीज जो तीसरे पर्सन को कह रहे हैं हम इग्नोरेंस में कि हमने नंबर ही गलत डाला है, तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाता है, वो बुलिंग की श्रेणी में चले जाएगा, हैरेसमेंट की श्रेणी में चले जाएगा। जिस जो भी आपने कहा हो उस पर डिपेंड करता है वो किस श्रेणी में जाएगा। तो उस हिसाब से चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो चुकी हैं।
1: साइबर अपराध की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को हम साइबर अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं?
2: सिंपल में हम बात करें, जो भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उससे हों उनको आप साइबर अपराध में ले सकते हैं, भले ही वो फोन का सिंपल सा मैसेज हो, इंटरनेट पे वीडियो शेयर हो रहा हो, सोशल मीडिया एप्स, उनका उपयोग हो।
1: हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है, इन सब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, हैकिंग को हम अगर आम भाषा में बताना चाहें तो हैकिंग है कि आपका डिवाइस बिना आपकी परमिशन के कोई उसको यूज कर रहा है, उसको हम हैकिंग में दे देते हैं। फिशिंग है, आप किसी ने चारा डाला, मछली फंसी तो फंसी, नहीं फंसी तो वो तो बहुत सारों को डाले, कोई ना एक ना एक तो मछली पकड़ में आ ही जाएगी। देखिए, आजकल AI के मामले में डीप फेक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो पहचान की चोरी इस श्रेणी में जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन खुद को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा प्रेजेंट कर चुके हैं कि और आपने अपना कंसेंट दे चुका है, जैसे अभी बीच में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, गिल्बी ट्रेंड, जिसमें सब लोग अपनी एआई में फोटोज डाल के जिबली बना रहे थे, तो उस ट्रेंड के चक्कर में आपने आपकी खुद की जो पर्सनल फोटोज हैं वो आपने एआई सर्वर पे अपलोड करी और उसको बोला कि तुम इसको इस्तेमाल करके हमारी एआई इमेजेस बना के दो, तो कहीं ना कहीं तो ये आपको पता नहीं था कि वो एआई की फोटो आप यूज कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो स्टोर भी करेगा। आपने उसको पूरा एक्सेस दे दिया उसको जहां पे इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग डेटा में हो, टेस्टिंग डेटा में हो, किसी में भी, वो एआई अब खुद के बेहतर सुधार के लिए या कहीं अपने डेटा में स्टोरेज तो है ही, उसमें वो रख के उसको कहीं ना कहीं यूज तो कर सकता है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों की हम अगर बात करें तो डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब आप आपके कंसर्न से ऐसी फोटोज देते हो, कुछ पर्सनल सीन्स भी होंगे जिनको आपने ट्रेंड में डालने के लिए किया होगा, तो वो सारी आपकी डिटेल्स विद फेस डेटा, बैकग्राउंड डेटा, कभी कभी तो अनजाने में ऐसी फोटोज भी अपलोड होती हैं जिसमें जियो लोकेशन टैग्ड हो, तो आपने बकायदा ये कि मैंने ये फोटो इस जगह इस समय इसके साथ ली, इस फोन से ली,
1: अच्छा
2: पूरा डेटा आपने एआई को दे दिया,
1: अब वो जो चाहे तो इस्तेमाल करे, आपका तो उसने अभी बना के दे दिया एआई वाला, लेकिन फिर वो उसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो परमिशन मांगी जाती है और हम देते हैं, फिर अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो क्या वो भी साइबर अपराध में आएगा?
2: गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का अपराध की श्रेणी में आएगा, अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। बात यह है कि कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन उसके पास जो डेटा है उसको कोई और उठा के उसका दुरुपयोग करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसकी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, तो ये वायरस और मेलवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, ये कैसे काम करता है?
2: देखिए, वायरस और मेलवेयर जनरली फोन्स डिवाइसेस में रहेगा, वायरस और मेलवेयर अगर हम नॉर्मल बातचीत में बोलें तो अपने इसमें नहीं आएगा। वायरस अलग अलग तरह के होते हैं, मेलवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हम अगर वायरस की इसमें ही बात करें तो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मान लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, आपको मेल आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वायरस डाउनलोड हो गया, उससे अब वो वायरस किस तरह का उस पर डिपेंड करता है, या तो वो आपके फोन को स्लो कर देगा, कहीं ना कहीं डेटा यूज करने लगेगा, डेटा माइनिंग करने लगेगा, या फिर मोस्टली देखा जाता है कि बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग में भी कहीं ना कहीं वो आपके फोन के रिसोर्सेस को यूज करने लगता है। वायरस मेलवेयर दोनों से हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपका डेटा चुरा के अपने पास लॉक कर लेगा, वो रैंसमवेयर में आ जाता है कि मतलब वायरस मेलवेयर का मिक्सचर ही रहेगा रैंसमवेयर, जिसमें वो आपका डेटा को इनक्रिप्ट ऐसा कर देगा कि आपको खुद का डेटा एक्सेस करने के लिए जिसने भी डाला है उसको पैसा देना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: और ऐसा केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हुए हैं, प्राइवेट एजेंसी के साथ भी हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जिसमें डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा था, सेंसिटिव था कि नहीं था, या कितना आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से वो रहता है।
1: साइबर स्टॉकिंग भी एक शब्द है, ये क्या होता है?
2: साइबर स्टॉकिंग मैं अब आपको समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जानना है जो आपसे रिलेटेड है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो पहले उससे आपसे उनकी आईडी मांगेगा,
1: ठीक है,
2: फिर उस आईडी की पूरी पूछ जांच पड़ताल करेगा कि ये इसकी ये वाली आईडी थी, अब इससे इसकी दूसरी सोशल मीडिया लिंक ढूंढते हैं, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी चीजें ओपन नहीं करता हूँ इतनी डिटेल्स में सोशल मीडिया पे या किसी भी माध्यम में, लेकिन आजकल का ट्रेंड ही है कि हर बच्चा इन्फ्लुएंसर की हम बात करें या हर एक जो भी एक ये आजकल चला रहा है सोशल मीडिया,
1: पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा बताना पसंद करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, पब्लिक फिगर होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं,
2: उनकी स्टॉकिंग में हम इसलिए नहीं गएंगे जो कि वो खुद ही इतना ओपन कर लेते हैं कि वो तो जिसको जो देखना चाहे देखे। स्टॉकिंग वो होती है जो बंदा चाहे नहीं लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके पूरे निकालते रहो, जैसे हम गए कहीं घूमने, हमने डाल दिया, सामने वाले ने देख लिया, अब उसका वो जो भी इस्तेमाल करे, जिस भी सेंस में उसको लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन हमने तो हमारे क्लोज वालों को बताया ना, हमने सब लोग के लिए थोड़ी बताया, हमने तो सिर्फ क्लोज वालों के लिए, ताकि उनको अपडेट रहे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, वो क्लोज वालों के लिए था, लेकिन क्योंकि उसको थर्ड पर्सन देख रहा है इसलिए वो साइबर स्टॉकिंग में जाएगा।
1: तो ये मतलब कहना चाहिए कि आपके बिना अनुमति के आपके बारे में कोई जानकारी ना ले सके, फोन की भी ना ले सके, आपके डेटा की ना ले सके, ये सारी चीजें साइबर अपराध में आती। बात तो हो गई हमारी अपराध की, चुनौतियों की तो बात हो गई, कैसे बचा जाए?
2: अभी साइबर स्टॉकिंग की बात चल रही थी तो इसी के इसमें हम देंगे। जनरली जितने भी एप्स हैं, कोई सा भी सोशल मीडिया एप्स हो, उसमें एक यूजर के पास पूरे के पूरे राइट्स रहते हैं कि वो कौन सी चीज उसके किसको शेयर करना चाहे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेसी फंक्शंस ओपन रहते हैं। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन इसलिए रहते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से अपनी जो बैकएंड की चीजें हैं जो कि कंप्यूटर्स को चाहिए डेटा, अब वो डेटा कहाँ से लाएंगे, वो डेटा यूजर्स से ही आएगा। एक कह सकते हैं कहानी है या प्रोवर्ब है, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो। तो आपको चीजें तो सुविधाएं तो फ्री में दे रहे हैं या चीपेस्ट रेट में दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो आप
3: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उससे बचने के लिए आप प्राइवेसी फंक्शंस जितने भी हैं उनमें अपनी थोड़ी जागरूक बनने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। एक मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएट बंदा या एक 12th pass 10th pass जो भी आज की डेट में श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन आज की श्रेणी में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि सब कुछ अब बताते हैं ओपनली। हमारे टाइम पे तो नहीं था, आपके टाइम पे भी आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन आजकल 7th 8th के बच्चों को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है, एजुकेशन करिकुलम में है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो एक आम उसको देख सकता है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल डिवाइस है, उसका भी अपना एक आईडी है, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें ओपन है। भले ही पेरेंटल कंट्रोल से हम कहीं ना कहीं ब्लॉक लगा लें, लेकिन उसके लिए वो सारी चीजें ओपन है और वो इतना सोचेगा भी नहीं कि मैं प्राइवेसी के बारे में इतना ध्यान दूं। लेकिन जब तक वो उस चीज को लॉक करने की एज में आएगा तब तक वो अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आगे की उसमें बात करें।
3: एंटीवायरस उपयोग किया जा सकता है
2: इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, एंटीवायरस मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ इसमें एंटीवायरस डालना इज मच रिस्कियर। वो कहते जरूर हैं कि जहर का तोड़ जहर होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट जो आते हैं और आजकल तो वही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपन को डालने की जरूरत नहीं है। मैं विंडोज की बात करूंगा, विंडोज ओएस की सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज होने वाला ओएस है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट भी हम बात करें कॉमन सेंस में हो चुका है। उसके अंदर एक है विंडोज डिफेंडर, वो डिफेंडर सबसे अच्छा एंटीवायरस को ब्लॉक कर सकता है, बहुत सारी फायरवॉल सारी सिक्योरिटीज रखता है, लेकिन अगर आप आपके डिवाइस में एंटीवायरस डालते हो तो वो उसी को ब्लॉक कर देता है।
3: अच्छा।
2: तो आपने जो मेन अपना बैकबोन थी, बैकअप था, जब उसी को बंद खत्म कर दिया तो फिर ये एंटीवायरस कैसे बचा पाएगा।
3: तो मतलब कहना चाहिए सतर्कता जरूरी है,
2: नॉलेज रखना इस फील्ड में ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंटीवायरस कंपनी या सॉफ्टवेयर आपका क्या डेटा एक्सेस करता है।
3: तो ये तो बात हो गई एक जानकार वाले व्यक्तियों के लिए, एक जो एक आम नागरिक है जो एक आम फोन इस्तेमाल करता है 15-20 हजार का करता है, और वो जो कंपनियां जब इन्हें बेचती है तो बहुत सारी चीजें बताती है कि दमदार पिक्चर है, दमदार ये है और ऐसा है वैसा, ऐसे लोग साइबर की घातक अपराध से कैसे बच सकते, उनके लिए बिल्कुल एक सरल शब्दों में बात करेंगे।
2: सरल शब्दों में उन लोगों के लिए कि एक लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्न तो करना पड़ेगा, बेसिक रखिए, ज्यादा डिटेल में भले ही ना जाइए,
3: बहुत सारी चीजों को डाउनलोड मत करिए अनजान, मतलब
2: अगर आपको कहीं शक हो रहा है तो अपने किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आसपास कोई थोड़ा बहुत जानकार हो उससे जानकारी ले लीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सामने वाले की 100% बात मानो, बस थोड़ी जानकारी ले लो फिर अपने हिसाब से एक्ट करो।
3: ठीक है,
2: अगर आपको लगता है कि ठीक थी जानकारी तो उस हिसाब से एक्ट करो, नहीं थी तो अपने जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप रहता है, आपके हिसाब से क्या परमिशन लगनी चाहिए कैलकुलेटर को?
3: कुछ नहीं, बस
2: नॉर्मली रहना चाहिए, कैश स्टोरेज। लेकिन अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी फोन परमिशन, स्टोरेज परमिशन, मैसेज परमिशन, लोकेशन परमिशन मांग रहा है और आप उसको यस यस यस यस करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट दे रहे हो कि हाँ भैया मैं ओपन हूँ, आओ कर लो हैक या आओ ले लो मेरा पूरा डेटा।
3: ठीक है,
2: तो कहीं ना कहीं देखना तो अपन को पड़ेगा कि ये वाली ऐप है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
3: ठीक,
2: कुछ कुछ ऐप्स ऐसी रहती हैं जो मांगती हैं, जिनको मैंडेटरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक उनके पास डेटा होना जरूरी है कि ये सही आईडी थी कि नहीं थी, ये सही एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम मेल की बात करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया हो, आपने कहीं थर्ड कंप्यूटर में आप ही ने लॉग इन किया तो वो मेल आपको आएगा कि आपका ये वाली लोकेशन से हुआ, चाहे आप ही थे कि नहीं थे,
3: आप ही थे कि नहीं थे।
2: अब अगर आपने उसको चेक कर लिया और आपको पता है आप नहीं थे, तो आप तुरंत वहां पे लॉग कर सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूँ, इसको अपन हटा देते हैं।
3: जी बिल्कुल,
2: आप थे तो कोई बात ही नहीं,
3: बात ही नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस भी होना चाहिए,
2: ये जानकारी अब आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये मेरे को मिला है तो इस समय क्या इस्तेमाल कर सकते।
3: तो मतलब हमारे जितने भी फोन धारक हैं वो अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो अगर कोई जानकारी मांगता है तो बहुत ध्यान से पहले उसे पढ़ें, फिर उसको यस कहें और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा इस समय एक शब्द का प्रचलन और चल रहा है क्योंकि नई चीजें जिंदगी में आई हैं तो नए नए शब्दावली भी आई हैं, वो है एक डिजिटल अरेस्ट।
2: जी,
3: ये क्या चीज है, इसे किस तरह से प्रहार होता है और किस तरह से बचना चाहिए?
2: डिजिटल अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी बात करें कुछ नहीं होता,
3: कुछ नहीं होता है,
2: लेकिन अब लोगों को डर रहता है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर होता यह है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन का जमाना सभी करते हैं, उसी का बेस माध्यम जो हम ज्यादातर केसेस जो डिजिटल अरेस्ट में देखे गए अभी तक उसमें बता रहे हैं, तो उसमें बेस ये होता है कि आपने एक्स जगह से आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर आया, इसके अंदर कुछ भी एक अवैध पदार्थ पाया गया है, तो इसके अंदर आप कस्टडी में हो, आप वीडियो कॉल करके आपको बताया जाएगा बकायदा पूरी ड्रेस में कि ये वाला कोट है, ये है, वो है, और उसमें कह देते हैं कि आपके कंप्यूटर डिवाइस या फोन को वीडियो कॉल फुल टाइम चालू रखो, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
3: मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पे नियंत्रण किया जाता है कुल मिला के, तो ये तो कुछ भी बात नहीं हुई, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव हो गया,
2: मेंटल प्रेशर इतना डाल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो चीज आपने ऑर्डर करी ही होती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है,
3: तो
2: उसके चक्कर में
3: ऐसे में क्या करना चाहिए?
2: सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से, ऐसे में तो अगर फोन डिवाइस है तो एयरप्लेन मोड, कंप्यूटर है तो मॉडम बंद।
3: अच्छा, ऐसे में पुलिस की कितनी सहायता लेनी चाहिए, क्या सच में बताना चाहिए? कई लोग बता नहीं पाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में ये बात भी आई थी कि अचानक से आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो गए या यंगस्टर्स होते थे, तो उनके साथ आया, फिर उन्होंने अश्लील वीडियो दिखाया वहां से, तुरंत वो हो गया कि नहीं, अब इसमें आप आ गए हैं, आप पैसे दीजिए या आप ये करिए तो हम आपका नहीं तो वीडियो लीक कर देंगे। ये जो चीजें हुई हैं ये क्या है, इससे कैसे बचें हमारे श्रोता?
2: जब आपने किया ही नहीं है तो वीडियो वायरल होकर क्या ही होगा?
3: पुलिस की सहायता लेना चाहिए,
2: जरूर लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस करते इसलिए नहीं है जो कि खुद डर जाते हैं कि पुलिस हम पे दबाव डालेगी कि तुमने एक्चुअल में किया, तुरंत पुलिस की सहायता ली जाए, FIR की जाए, नजदीकी जो भी साइबर कार्यालय है वहाँ।
3: सबसे पहले तो अपना डिवाइस बंद कर दिया जाए कुल मिला के।
2: नहीं, डिवाइस बंद नहीं करना, जो सामने वाले से वीडियो आए पहले तो उसको ब्लॉक कर दो। अगर उसके पास आपका कुछ डेटा है तो जो भी आपके क्लोज में लोग थे या आपका फ्रेंड सर्कल है उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर आपके पास कोई पैसे लेने के लिए आता है तो मत देना, ताकि आप खुद को भी सेफ साइड कर लो और सामने वाले को भी सेफ साइड कर लो। और मेरा मानना तो ये है, जो दूसरा साइड है जिसके साथ नहीं हुआ है लेकिन वो क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में है, तो भैया अगर आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो या क्लोज में हो तो उनके जिसका भी जो भी एरर आ रहा है, जैसे मान ले बहुत सारे वीडियो कॉल्स में देखा जाता है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसे सेंड कर दो,
3: जी जी जी,
2: या मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पैसे नहीं लाया, मेरे को पैसे सेंड कर दो
3: जी।
2: तो जो उनका रिलेटिव हो, जैसे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को फोन लगा के बोल दो आंटी तबीयत खराब है कि नहीं है, मेरे पास ये फोन आया था इसलिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, अगर है जरूरत है तो आप जरूर सेंड करो। लेकिन जब आंटी ही मना कर दे कि नहीं बेटा मैं तो सस्त हूँ, घर पे हूँ, आ जाओ मिल लो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई,
3: तो फिर बिल्कुल तुरंत उस चीज को चेक करें और फिर उसके बाद पहले उस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करें, उसकी तहकीकात करें, फिर उसके बाद काम करें। क्या कानूनी जो बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या कुछ इसके लिए बदलाव भी हुए हैं, कुछ नियम कानून बने हैं भारतीय?
2: कानून तो बहुत सारे बने हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें तो उन कानून का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बैक एंड सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आप जो गलत पक्ष है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दोगे कि हम तो कुछ भी करें, हम पे कोई निगरानी नहीं होगी, हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब ओपन हो चुके हैं कि हमारे साथ ये चीज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हम देखा जाए या एक इमोशनल मेंटल प्रेशर के उसमें देखा जाए, बहुत सारे लोग नहीं बताते अभी भी, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कहूंगा 20-25% चीजें ओपन हो चुकी हैं। अब वो इतनी अच्छी ओपन हो चुकी हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे बाकी चीजें भी ओपन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे अब कंट्रोल आया है।
3: ओपन वाईफाई हमने आजकल देखा है कि रेलवे स्टेशन पे हो गया है, सार्वजनिक क्षेत्र
2: पे हो गया है,
3: सब जगह आजकल मिलने लगा है, तो क्या ऐसी जगह से कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलिए हमें
2: नेट मिल गया,
3: फ्री नेट मिल रहा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। अगर आप ऐसी जगह पर नेट एक्सेस करते हैं तो किन चीजों की सावधानी बहुत जरूरी है?
2: मेरा तो ये सुझाव रहेगा ऐसी जगह पे नेट का उपयोग ना ही करो।
3: ठीक है,
2: अगर आपके पास मान लेते हैं डिवाइस में नेट खत्म हो गया, अपन को ऑनलाइन किसी चीज की जरूरत है, भैया रिचार्ज करा लो, डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है,
3: बहुत जरूरी है।
2: ये नहीं कह रहा हूँ हर नेटवर्क में वो रहता है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा, लेकिन ओपन नेटवर्क में अगर आप चाहो तो कोई भी एक बंदा आपके डिवाइस को चेक कर सकता है कि वो ओपन डिवाइस से कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन अ सेंस एक वाइट हैट और एक रेड हैट हैकर्स होते हैं। मैंने जो कि पूरा कोर्स किया है इस फील्ड में तो मैं बता सकता हूँ, जो हैकिंग फील्ड होती है, हमने एक एक्सपेरिमेंट सर ने कराया था हमारे, उनने अपना वाईफाई ओपन करवा दिया था, और क्योंकि हमारे पूरे बैच में बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, उनने सबसे सिंपल सा एक चीज बोली, उनने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है आप इसको यूज करो, उनने बस नॉर्मल सा कमांड दिया था कि आप आपके क्लोज बंदे को जो भी आपके क्लास में ही बैठा उसी बंदे को एक पर्टिकुलर ये वाला मैसेज करो। वो मैसेज भी बहुत सिंपल था कि आज मैं इस क्लास में आया हूँ, हमने कल ये सीखा था, नॉर्मल सी समरी थी। जिन लोगों ने उस वाईफाई से कनेक्ट किया था उन लोगों के मैसेज पहुंचे ही नहीं, वो बीच में इंटरप्ट हो गए और उनके पास तीसरा मैसेज पहुंचा जो सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ये गलत है, मुझे नहीं पता मैं एब्सेंट था, सिर्फ मल सा इतना मुझे फंसाया जा रहा है, बस इतनी सी तीन चार लाइनें थी उसमें। तो जो दूसरा वाला था ये तो मैंने किया नहीं, ये कैसे हुआ, ये सिंपल सा उनने हमें एक बेसिक उनने रन डाउन दिया था कि ये भी हो सकता है अगर आप मेरे ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करो। अब क्योंकि मैं हूँ मैं मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
3: बिल्कुल, एआई से भी अभी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इससे किस तरह से बचें और किस तरह से जो हमारे जो श्रोता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें।
2: मैम एआई का सबसे बड़ा अभी जो सबसे वो चल रहा है एक तो एआई वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपको परिजन की आवाज में फोन किया जाता है कि हमें एक्स वाई जेड की जरूरत है कम से कम हेल्प कर दो कुछ भी कर दो। दूसरा है डीप फेक, डीप फेक में आपको वीडियो कॉल आता है सामने वाले की शक्ल से, जो भी आपका परिजन है उसी की शक्ल आपको वीडियो कॉल में दिखेगी और उन्हीं का आपको वॉइस भी मिलेगी डीप फेक के अंदर, वो आपसे हेल्प मांगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं बिना चीजें सोच के हम उनकी हेल्प भी कर देते हैं। वही बात है कि क्रॉस चेक करना यहाँ पे भी जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर हम आपको वीडियो कॉल पे या फोन के माध्यम से कोई ऐसी चीजें मांगता है तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत तो बढ़ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग अगर हम किसी भी साइबर चीज से बचना चाहें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया या फिर ओटीपी ना शेयर करना हो गया, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना ना हो गया, सिक्योर पासवर्ड होना शुरू हो गया। लेकिन एआई से कैसे बचें, तो सबसे बेस्ट इज टू स्टेप वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेकिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओटीपी या मेल यहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी आएगा, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एआई खुद एक मशीन है और जो आपके पास ओटीपी भेज रहा है वो भी एक मशीन है। वो कहते हैं कि एआई में जो आप नंबर डालोगे वो रैंडम से आएंगे, लेकिन एआई एक मशीन है। बीच में एक दो हफ्ते पहले एक रिसर्च हुई है
3: जी,
2: रिसेंटली रिसर्च है, उसमें ये साबित किया उसने एक सिंपल से कोड से कि एआई जो नंबर जनरेट करता है ये रैंडम नहीं होते, कोई भी इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक्चुअल ओटीपी जो आपको गई है वो भी निकाल सकता है। और वायरस और मेलवेयर के चक्कर में जो कि आपके फोन के अंदर जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वो तो उसके पास पहुंच ही रहे हैं, तो उसको वो रिवर्स इंजीनियर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस वो उस लिंक फोटो पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वायरस आ गया।
3: जो साइबर अपराध करते हैं और जो लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
2: भैया कम कर दो, सरकार सख्त हो चुकी है।
3: अच्छा
2: पहले भले ही फ्री रेन थी, अब वो फ्री रेन नहीं बची है
3: जी।
2: अब हर सरकार इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल भी हम बात करें तो हर सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है और बहुत जल्द जल्द एक्शन ले रही है।
3: तो आप भले कितनी ऊंची उड़ान उड़े लें आपके पर
2: कभी ना कभी तो फंसोगे, डिजिटल फुटप्रिंट अपना हर समय छूट जाता है, भले ही वो हैकर का हो आपका हो मेरा हो, डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह है।
3: बिल्कुल,
2: अब उस डिजिटल फुटप्रिंट को यूज सामने वाला कैसे करेगा
3: जी,
2: पॉजिटिव में करेगा तो वो उसकी बात अलग है, नेगेटिव में करेगा तो उसकी बात अलग है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट वही है कि एक चोरी के सीन में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हम क्राइम की बात करें साइबर की बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट आपका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है।
3: तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि जो हमारे जो श्रोता है वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं उसको संभाल कर रखते हैं उतनी ही सतर्कता उतनी ही जागरूकता भी जरूरी है, वास्तविक बने रहिए। कुछ भी ऐसा लगता तो पहले क्रॉस चेक करें, ज्यादा फेमस होने के चक्कर में अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें, सेफली रखें, अपने पासवर्ड अच्छे से रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने और अपनों के साथ रहें।
2: मैम मैं कहना चाहूँगा जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो भी हैं, कभी भी अपनी OTP या पर्सनल डिटेल, कार्ड का हो गया, CVV हो गया, या कोई भी थर्ड पर्सन आपसे OTP मांगे तो उसको OTP कभी ना दीजिए। सबसे बेस्ट और सिक्योर मेथड अगर रखना है तो वो है OTP का। आप दो ही मत, आपका जो रिस्क है हैक होने का या डेटा जाने का वो बहुत कम हो जाता है। अगर आपसे कोई मांगता है, वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, भले ही वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, आपसे OTP मांगेगा ही नहीं। सबने अपने अपने डिस्क्लेमर डाल के रखें कि हमारी ओर से OTP नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाई चांस मांगता भी है तो पहले तो आप उससे उसकी ID वगैरह ले लीजिए, फिर भी OTP ना दीजिए। ID की फोटो लेके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन OTP ना दो
3: जी।
2: सबसे बेस्ट सिनेरियो ये
3: नो मतलब नो। बेहद सार्थक और विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुझे मौका दिया अपनी पक्ष रखने का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
3: ये रही हमारी आज की जानकारी टेक गुरु में, कि किस तरह साइबर अपराध हैं, चुनौतियां हैं और उसमें कैसे सुरक्षा हो सकती है। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुन्नानी का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
4: जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी-अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।
5: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
6: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: टेक गुरु कार्यक्रम के बाद अब समय है कार्यक्रम भारत विभूति का। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत को समर्पित है। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और आज भारत विभूति के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम बात करेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी पंत की। श्रोताओं, इस तारतम्य में आज मेरे साथ हैं मेरे रेडियो मित्र
2: दीपेश
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, भारत विभूति में आज बहुत ही खास दिन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हिमालय की गोद में अपनी आंखें खोली और जिनके इरादे उसी हिमालय जितने अटल और अडिग रहे। उत्तराखंड की वादियों से निकला एक ऐसा लड़का जो पहले एक होनहार वकील बना, फिर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, फिर उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री और आखिरकार भारत का गृह मंत्री। और इन सब से भी बढ़कर वो थे एक सच्चे इंसान जिन्होंने कभी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवन गाथा। साथियों, ये नाम केवल दो शब्द का नहीं है, ये तो एक पूरा युग है, एक संघर्ष है, एक विचारधारा है। ये नाम उन लाखों लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रिटिश दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मुक्ति की राह तक रहे थे। सोचिए, एक युवक जिसकी वकालत चमक रही थी, जिसका भविष्य उज्जवल था, जिसके पास सुख सुविधाएं और समृद्धि के सारे द्वार खुले हुए थे, उसने ये सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, माँ भारती की पुकार। उस पुकार को सुनकर उन्होंने अपनी कलम और मुकदमे की फाइलें एक तरफ कर दी और थाम लिया तिरंगा।
2: जेल की अंधेरी कोठरियां उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां उनके इरादे को नहीं झुका सकी, क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हो उसे न ठंड सताती है, न भूख, न कारागार। और जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस विशाल राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। भारत वर्ष की पावन धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, त्याग और कर्म निष्ठा से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम आभा से भर दिया। इन्हीं दिव्य विभूतियों में से एक थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वे उत्तर भारत के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया।
1: श्रोताओं, पंत जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया। वो एक ऐसे राजनेता थे जो जनता के दिलों में बसते थे, जिनकी सरलता, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मित्र और विरोधी दोनों ही मानते थे। भारत सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 1957 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से अलंकृत किया। ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। पंत जी का जीवन और कार्य आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है।
2: पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वायु और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में पले बढ़े गोविंद वल्लभ में बचपन से ही उस पर्वत सी दृढ़ता और स्थिरता विद्यमान थी। उनके पिता श्री मनोरथ पंत एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य। माता का नाम गोविंदीबाई था जो एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। माता पिता दोनों ने बालक गोविंद में संस्कारों के बीज बचपन से ही बोए। माता से उन्हें करुणा, सेवा भाव और धैर्य की शिक्षा मिली तो पिता से अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के गुण प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही गोविंद वल्लभ एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। वे पढ़ाई में अपनी आयु के अन्य बालकों से सदैव आगे रहते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। गणित, इतिहास और भाषाओं में उनकी विशेष रुचि थी। उनके अध्यापक उनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो जाते थे और अनुमान लगाते थे कि यह बालक एक दिन अवश्य महान बनेगा।
1: बिल्कुल श्रोताओं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद पंत जी उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज चले गए। वहां उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय उत्तर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यहां उनका परिचय राष्ट्रवादी विचारधारा और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से हुआ। इलाहाबाद में पंत जी का मन केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं, सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय हिस्सेदारी की। इलाहाबाद उन दिनों भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और कई बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन संपर्कों ने पंत जी की राजनीतिक चेतना को और भी अधिक पैना कर दिया।
2: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री LLB प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। उनकी वकालत का एक विशेष गुण यह था कि वे सदा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। कमजोर और गरीब लोगों के मुकदमे वे प्रायः निशुल्क लड़ते थे। उनकी तर्क शक्ति और वाक्पटुता के सामने बड़े बड़े वकील भी परास्त हो जाते थे। कुछ ही वर्षों में वे काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाने लगे। परंतु वकालत की समृद्धि और सुख सुविधाएं उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उनके भीतर देश सेवा की ललक प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पंत जी ने बिना किसी दुविधा के अपनी सफल वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की पुकार पर उठ खड़े हुए। यह उनके त्याग और देशभक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वे सफल रहे।
1: फिर सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पंत जी ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने जनजागरण का काम किया और हजारों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। इस कुप्रथा के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सामान को बिना किसी पारिश्रमिक के ढोना पड़ता था। ये न केवल शोषण था बल्कि मानवीय गरिमा का घोर अपमान भी था। पंत जी ने जनता को इस दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
2: 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के पवित्र पर्व पर बागेश्वर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने कुली बिथा बंद सहित। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस आंदोलन की सफलता ने पंत जी के नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया और कुमाऊं में उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया तो पंत जी ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने और अन्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने की अपील जनता से की। इसके फलस्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल की कठोर परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु उनके हौसले को जरा भी नहीं तोड़ सका। कारागार में भी वे अपने साथी कैदियों का मनोबल बनाए रखते और देश की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते। उनकी कई जेल यात्राएं हुई और हर बार वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आए। उनका यह अटूट संकल्प जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
1: वहीं अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का आह्वान किया। पंत जी ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उन्हें अहमदनगर किले में नजरबंद रखा गया। अहमदनगर किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने 3 साल से अधिक का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वतंत्र भारत के भविष्य की योजनाएं बनाई और अपने साथियों के साथ राजनीतिक विचार विमर्श किया। ये कठिन काल उनके लिए एक अनमोल अनुभव था जिसने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया।
2: सन 1923 में पंत जी पहली बार संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने। विधानसभा में उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा और तेज लेकर आई। वे एक प्रखर और निर्भीक वक्ता थे। उनके भाषण तर्कपूर्ण, तथ्यों पर आधारित और ओजपूर्ण होते थे। उन्होंने विधानसभा में किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। सन 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में भारी बहुमत प्राप्त किया। पंत जी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार और प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। किंतु सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौजूदा सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।
1: 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जब उत्तर प्रदेश के लिए पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो सर्वसम्मति से पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम सामने आया। वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये पद उन्हें उनकी योग्यता, अनुभव और जनप्रियता के चलते मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सन 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत जमींदारों की अतिरिक्त भूमि सरकार ने ले ली और उसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। इस एक कदम से लाखों किसान परिवारों की जिंदगियां बदल गई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे।
2: उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में नए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। उनका मानना था कि शिक्षित नागरिक ही देश की सबसे

0: 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस पूरे कार्यकाल में उनकी ईमानदारी और कुशलता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा।
1: दिसंबर सन 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक था। पंत जी ने इस पद को अत्यंत दक्षता और कुशलता से संभाला। गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन था। देश की आजादी के बाद ये सबसे जटिल और संवेदनशील प्रश्न था। विभिन्न भाषाई समूह अपने अपने राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर हिंसा भड़की हुई थी। पंत जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया। 1 नवंबर सन 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश में नए राज्यों का गठन हुआ।
0: हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में पंत जी की भूमिका अग्रणी रही। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में जोरदार तर्क रखे और यह सुनिश्चित किया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस निर्णय से अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान कम न हो। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। अनेक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विवादों को उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझा लिया। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से उन्होंने शासन तंत्र को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया। उनके नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता और अधिक सुदृढ़ हुई।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जीवन भर सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयां, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध सदैव अपनी आवाज उठाई। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई नीतियां भी बनाई और उन्हें कार्यान्वित भी किया। वे गांधी जी के इस विचार को मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है और इसे दूर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति और सरोकार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता है। उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए न केवल जमींदारी प्रथा खत्म की, बल्कि कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा।
0: पंत जी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदार बनाने पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछाया गया। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए नए कॉलेजों की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में भी काम किया।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व बहुआयामी और अत्यंत ही प्रभावशाली था। वो शारीरिक रूप से लंबे, चौड़े और तेजस्वी पुरुष थे। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक और दृढ़ता थी। जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो श्रोताओं को बांध लिया करता। उनके भाषण कभी खोखले नहीं होते थे। वो हमेशा तथ्यों और तर्कों पर आधारित होते। उनका सबसे बड़ा गुण था उनकी अटूट ईमानदारी। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था और यही कारण था कि जनता में उनके प्रति इतना विश्वास और सम्मान था।
0: सरलता उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। वे एक साधारण कुर्ता धोती में रहते थे। उन्हें आडंबर और प्रदर्शन से आपत्ति थी। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद वे आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बात करते, उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें हल करने का प्रयास करते। उनका कोई भी कार्यालय आम नागरिकों के लिए खुला रहता था। पंत जी का जीवन दर्शन अत्यंत व्यवहारिक था। वे आदर्शवादी थे किंतु हवा में नहीं जीते थे। उनका मानना था कि देश की सेवा शब्दों में नहीं कर्म से होती है। वो राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनके लिए राजनीति एक मिशन था, व्यवसाय नहीं। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा। पंत जी साहित्य और संस्कृति में भी गहरी रुचि रखते थे। हिंदी साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। कुमाऊनी लोक संस्कृति और पर्वतीय कला के प्रति उनका प्रेम जीवन भर बना रहा। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वे पुस्तकें पढ़ने के लिए समय निकाल लेते थे।
1: सन 1957 में भारत सरकार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। भारत रत्न की घोषणा होने पर सारे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो खास तौर से जश्न मनाया गया। इस सम्मान को पाकर पंत जी जरा भी गर्वित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक यही कहा कि ये सम्मान उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया। ये उनकी विनम्रता और उनके महान व्यक्तित्व का ही प्रतीक था। भारत रत्न मिलने के बाद भी पंत जी की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उतनी ही सरलता, लगन और समर्पण के साथ अपना काम किया करते। इस सम्मान ने उन पर और अधिक जिम्मेदारियों का भार जो डाल दिया था। उन्होंने देश की सेवा में और अधिक परिश्रम किया।
0: पंडित गोविंद बल्लभ पंत का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम सालों में धीरे धीरे गिरने लगा था। कई वर्षों की जेल यात्राएं, संघर्ष और अथक परिश्रम ने उनके शरीर पर अपना प्रभाव डाला। वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह देते थे, परंतु पंत जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। बीमार होने के बावजूद वो अपने कार्यालय जाते रहे, फाइलें देखते रहे और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करते रहे। उनके सहयोगी और मित्र उनकी समर्पण भावना से अभिभूत होते थे और चिंतित भी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें विश्राम करने की सलाह दी, किंतु पंत जी कहते थे, जब तक देश को मेरी आवश्यकता है मैं विश्राम नहीं करूंगा।
1: 7 मार्च 1961 को ये महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। नई दिल्ली में उनका निधन हुआ और जब ये दुखद समाचार देश भर में पहुंचा तो शोक की एक लहर सारे देश में दौड़ गई। संसद में उनके निधन पर श्रद्धांजलि सत्र आयोजित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के सबसे महान सपूतों में से एक बताया। राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनकी अंत्येष्टि में लाखों लोगों ने उपस्थित होकर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का शरीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके नाम पर कई संस्थाएं, सड़कें, पार्क और भवन बनाए गए हैं जो उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए हैं।
0: इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उनके नाम पर स्थापित है, जो सामाजिक शोध के क्षेत्र में देश की एक प्रमुख संस्था है। उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका नामकरण उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से किया गया। दिल्ली में उनके नाम पर एक प्रमुख अस्पताल भी है। उनके जन्मदिन यानी 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार इसे राज्य स्थापना दिवस की भावना से जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके जीवन पर निबंध, भाषण और नाटक प्रतियोगिताएं होती हैं। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है।
1: भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक टिकट भी जारी किया है। संसद भवन में उनका चित्र स्थापित है। लखनऊ में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है जो प्रतिदिन लाखों लोगों को उनकी याद दिलाती है।
0: पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक हैं, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह था। पारदर्शी, प्रेरणादायक और अनुकरणीय, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विश्वास के साथ जिया कि एक व्यक्ति के त्याग और परिश्रम से राष्ट्र का भाग्य बदला जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके सुधार, गृह मंत्री के रूप में देश की एकता को मजबूत करने के उनके अनेक प्रयास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हिंदी को राजभाषा बनाने में उनकी भूमिका, ये सभी उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर भारत सदा गर्व करता रहेगा।
1: भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। सच्ची राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। सच्ची सफलता व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, जन कल्याण में है। उनका जीवन इन्हीं मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। आज जब हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हैं तो हमारे मन में एक ही संकल्प उठना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को और अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। पंत जी अमर है और जब तक भारत है तब तक याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम भारत विभूति में हम बात कर रहे थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन में थे मैं यानी स्वाति और मेरे सहयोगी
0: दीपेश,
1: और इस कार्यक्रम का लेखन किया था अखिलेश कुमार वर्मा ने। तो इसी के साथ ये रेडियो कार्यक्रम भारत विभूति यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी मित्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: खिड़कियों पर टैक्स और चाय, एक विचित्र ऐतिहासिक सौदा। क्या आप जानते हैं कि एक प्याली अच्छी चाय के लिए ब्रिटिश प्रेम ने एक समय उनके घरों में आने वाली सूरज की रोशनी पर टैक्स लगवा दिया था। यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1784 में यह ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली की एक कठोर वास्तविकता बन गई थी। इस कहानी के केंद्र में थी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और तस्करी की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंपनी के मुनाफे और राष्ट्रीय खजाने दोनों को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक चाय कंपनी के व्यापारिक खाते की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी। चाय ने कंपनी के व्यापार में उसी तरह क्रांति ला दी थी जैसे पिछली सदी में कपास ने लाई थी। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच था, ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी शुल्क लगा दिया था जो 79% से लेकर 127% तक था। क्या आप जानते हैं कि इन ऊंचे करों का परिणाम क्या हुआ? चूंकि चाय इतनी महंगी थी इसलिए इंग्लैंड में पी जाने वाली आधी से अधिक चाय कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों द्वारा देश में तस्करी करके लाई जा रही थी। इससे कंपनी के गोदाम लाखों पाउंड महंगी चाय से भर गए थे जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। क्या आप जानते हैं कि विलियम पिट द यंगर ने इस संकट को कैसे हल किया? उन्होंने 1784 का ऐतिहासिक कंप्यूटेशन एक्ट पेश किया। इस कानून के पीछे का तर्क सरल लेकिन साहसी था। यदि सरकार चाय पर टैक्स कम कर दे तो तस्करों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और जनता वापस कंपनी से कानूनी चाय खरीदने लगेगी। पिट ने चाय शुल्क को 100% से घटाकर मात्र 12.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मालिकों के लिए इसमें क्या पैंच था? ब्रिटिश सरकार उस टैक्स राजस्व को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि यह राजस्व की वित्तीय स्थिति के लिए अनिवार्य था। चाय राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पिट ने टैक्स को एक ऐसी विलासिता से हटाकर जिसे आप पीने या ना पीने के लिए चुन सकते हैं। एक ऐसी चीज पर डाल दिया जिससे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, उनकी खिड़कियां। यही कुख्यात विंडो टैक्स की उत्पत्ति थी। यह शाब्दिक रूप से रोशनी और हवा पर लगने वाला टैक्स था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि चाय का व्यापार कंपनी और क्राउन यानी राजसत्ता दोनों के लिए लाभदायक बना रहे। क्या आप जानते हैं कि यह अदला बदली ही वह गुप्त इंजन था जिसने कंपनी के बाद के वर्षों को शक्ति दी। 1784 के इंडियन एक्ट के माध्यम से भारत में अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का त्याग करने के बदले में कंपनी को चीन में यह विशाल व्यावसायिक अवसर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सफल रहा? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। 1830 तक अकेले चाय शुल्क से ब्रिटिश खजानों को सालाना 30 लाख पाउंड से अधिक मिल रहे थे, जो पूरे देश के राजस्व का लगभग 10वां हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि खिड़कियों पर लगने वाले इस अजीब टैक्स के बिना ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता? कम शुल्क के कारण चीन में चाय का व्यापार की सफलता ने वास्तव में भारत भर में कंपनी के महंगे होते जा रहे सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। यह इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी का अस्तित्व अक्सर युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं से अधिक एक चायदानी में उबल रही चीज पर निर्भर करता था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम संभावना की रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है रेडियो रिपोर्ट का है, आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार को नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में। यह है बुंदेली गायन कलाकार हैं राजकुमार सिंह ठाकुर और उनके साथी।

0: तो सिया राम माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा तुलसी की इन पंक्तियों के साथ हम अपना बुंदेली गायन शुरू करते हैं। तो गणेश जी सरस्वती की वंदना एक लाइन में हो गई और इसके बाद अपन शिव जी के लिए गीत प्रस्तुत करते हैं। महाशाय बुंदेली।
1: शिव सम

भोले बाबा की तो ऐसी लीला है देखो, तनक तनक सी बात पे प्रसन्न हो जात और इनको वो चढ़ाओ जात जो कोई को नहीं चढ़ाओ जात। भांग दातू रो एक लोटा जल, कछु बड़ो मुतकी मेवा पकवान नहीं चाने, तनक पे प्रसन्न हो जाते हैं।

0: की जय। अब शंकर जी की चर्चा हो गई, एक चर्चा और न हो तो चर्चा अधूरी है। काय से शंकर जी जिनको भजन करते हैं, एक भजन उनके नाव को, फिर उसके बाद हम मनोरंजन की तरफ बढ़े, मनोरंजन गीत बुंदेली के।
1: हे राम जो

0: अपन जब संसार में आओ थे घर मेरे जब तो भजन करो
1: उनके सेवा को है
0: खूब भजन करे थे के भगवान हम बाहर आ जाएं इस संसार की माया जाल से और आपको खूब भजन कर हैं मन जब आ जाते हैं फिर नहीं करत फिर तो जब ऐसी उम्र हो जाते जब भजन करने लगते पहले नहीं करत देखो आप
2: अरे मैं

0: तो जा सकरों दा नहीं है कि जगह की कमियां हैं संसार में, माया मोह मोह मक्सल ये जो है बेकार
1: दुखों के कारण है।
0: जा सकरों दा है प्रभु ई माया को फिर आप काट दो और सभी पापों से मुक्त कर दो, प्राणी को सुख में पहुंच जाए

0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट, अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम संभावना की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नजर जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: रेडियो
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ सुनाएंगे।
0: आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। पिछले भाग में आपने सुना था कि संसार के चक्र को देखकर सिद्धार्थ कितने विकल हैं। पिछले भाग में आपने ये भी सुना था कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। अब आगे सुनिए।
1: लीजिए सुनिए सिद्धार्थ के सौतेले भाई नंद का पश्चाताप।
2: आरे, ये मुझ पर कैसा अत्याचार! राज्य तुम्हारा प्राप्त मुझे ही था तब का अधिकार। छोड़ा मेरे लिए हाय, क्या तुमने आज उदार। कैसे भार सहेगा संप्रति राहुल है सुकुमार। आर्य, ये मुझ पर अत्याचार। नंद तुम्हारी थाती पर ही देगा सब कुछ वार। किंतु करोगे कब तक आकर तुम उसका उद्धार। आर्य, ये मुझ पर कैसा अत्याचार।
1: सिर्फ नंद ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात उनकी सौतेली माता महाप्रजावती के विलाप का करुण दृश्य है अगला काव्यांश।
3: मैंने दूध पिलाकर पाला, सुड़गा पर मुझको वह मेरा मतवाला। कहां न जाने वह भटकेगा, किस झाड़ी में जा अटकेगा। हाय, उसे कांटा खटकेगा, वह है भोला भाला। मैंने दूध पिला कर पाला। निकले भाग्य हमारे सूने, वस्त दे गया तू दुख दूने। किया मुझे कैकई तूने, हाँ कलंक यह काला। मैंने दूध पिला कर पाला। कह मैं कैसे इसे सहूंगी, मरकर भी क्या बची रहूंगी। जी जी से क्या हाय कहूंगी, जीते जी यह ज्वाला। मैंने दूध पिला कर पाला। जरा आ गई यह क्षण भर में, बैठी हूँ मैं आज डगर में। लकड़ी तो ऐसे अवसर में देता जा ओ लाला। मैंने दूध पिला कर पाला।
1: सौतेली माँ का ये विलाप कैसे थमेगा, कैकई के समतुल्य समझ रही है आज खुद को महाप्रजावती। उधर कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन शोकग्रस्त होकर विचार मग्न है कि मैंने सिद्धार्थ का वीत राग कैसे कैसे मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी रोक ना सका सिद्धार्थ को।
4: मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल, किंतु भरी थाली गई उलट गया वह थाल। चला गया रे चला गया, छला न जाए हाय वह यह मैं। चला गया रे चला गया, खींचा मैंने गुण सतान। निकल गया वह बाण क्षमा, खींचा मैंने गुण सतान। निकल गया वह बाण समान, ममते तेरा मान महान। दला गया रे दला गया, चला गया रे चला गया। स्वस्थ देह सा था यह गेह, गया प्राण सा वह निस्नेह। अश्रु व्यर्थ हैं अब यह मेह। जला गया रे जला गया, चला गया रे चला गया। उसे फूल सा रखा पाल, गया गंध सा वह इस काल। यह विषफल कांटे सा साल, फला गया रे फला गया, चला गया रे चला गया। धिक सब राज पाट धन धाम, धन्य उसी का लक्ष्य ललाम। किंतु कहूं कैसे हे राम, भला गया रे भला गया, चला गया रे चला गया।
1: महाराज शुद्धोधन को भोग विलास ऐश्वर्य फीके लग रहे हैं। अब वे अपने अगले काव्यांश में अपूर्व धैर्य धारिणी यशोधरा से संवाद करते हैं।
4: धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं? तू ही बता, उसके लिए मैं आज क्या करूं?
5: उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके वे लौटे शीघ्र वन से।
4: तू क्या कहती है बहू? पाऊं मैं जहां कहीं, चतुरचरों को भेज खोजूं भी उसे नहीं।
5: तात नहीं।
4: कैसी बात बेटी, वह प्रौढ़ है क्या? वत्स भोला भाला है।
5: पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है।
4: गोपे, यह गर्व और मन क्या उचित है?
5: जो मैं कहती हूं तात, हाय वही हित है।
4: जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है।
5: धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है।
4: तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की। मैं हूं पिता, चिंता मुझे पुत्र की प्रगति की। भूला वह भूला, उठा रखूं क्या उपाय मैं?
5: उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूं हाय मैं।
1: महाराज शुद्धोधन और यशोधरा का संवाद सुन पाषाण हृदय भी पीड़ा से भर उठे, तो प्रजा का भी हाल विकल है।
2: भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही खोटा, दिखा दिखा कर लाभ अंत में आ पड़ता है टोटा। रोते रहे सभी पुर परिजन, राज्य छोड़कर राम गए वन। पड़ा रहा वो धाम धरा धन, खड़ा रहा पर कोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। गए आज सिद्धार्थ हमारे, जो थे इन प्राणों के प्यारे। भार मात्र कोई अब धारे, राज धूल में लोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। हम हो कितने ही अनुरागी, हुए आज वे सब कुछ त्यागी। कैसे इस विभूति का भागी, होता ये घर छोटा। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग ही कोटा। लो ये छंदक आया, पर कंथक शून्य पृष्ठ क्यों आया? हे भगवान, ना जाने कौन समाचार ये लाया।
1: प्रजा खुद के भाग्य को कोस रही है, ऐसे में सिद्धार्थ का प्रिय सारथी छंदक नगरवासियों और कुटुंबियों को संबोधित करके सिद्धार्थ के संदर्भ में कहते हैं।
2: कहूं और क्या भाई, आना पड़ा मुझे, मैं आया, मुझको मृत्यु ना आई। मारो तुम्ही मुझे, मर जाऊं सुख से, राम दुहाई। झूठ कहूं तो सुगति ना देवे मुझको गंगा माई। जोग भ्रष्ट थे आर्य, उन्हीं की धुन थी उन्हें समाई। राज्य छोड़ सन्यास ले गए, रज ही हाय रमाई। सोने का सुमेरु भी उनके निकट हुआ था राई। अस्त्र वस्त्र भूषण क्या उनको नहीं शिखा भी भाई। हाय, काट डाले वो केश, चिकने चुपड़े कोमल कच्चे, सच्चे सुर भी निवेश। शोभित ही रहता है शोभन, रख ले कोई वेश। दिया समान उन्होंने

0: तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश्य।
1: छंदक के लौटने के बाद, सिद्धार्थ के सन्यास लेने के बाद जब यशोधरा को पता चलती है, तब वो ऐश्वर्य और विलासता त्यागने का निश्चय करती है।
2: जाओ मेरे सिर के बाल, आली कर्तरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल, उलझे यहाँ न ये आपस में, सुलझे वे व्रतपाल, डसे न हाय मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल, कसे न और मुझे अब आकर हेम हीर मणिमाल, चार चूड़ियां ही हाथों में पड़ी रहें चिरकाल, मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल सा लाल, क्या है अंजन अंग राग जब मिली विभूत विशाल, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल।

यशोधरा का अंग हुआ, हाय मरण भी आज न मेरे संग हुआ। सखी वह था क्या सभी स्वप्न जो भंग हुआ,

तुझे वियोग देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, यह निश्वाय न उठता हाकर, बनता मेरा राग न रोग, मिला नहा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था, लिखा भाग्य में तो रोना था, यह मेरे कर्मों का भोग, मिला नहा इतना भी योग। पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर, लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, मिला नहा इतना भी योग। दूं किस मुंह से तुम्हें उलहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहां राज्य भी त्याज वहां मैं जाने तुम्हें न देती। आश्रय होता या वह बहना, नाथ मुझे इतना ही कहना, विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहां किया है, हंत अंत में यह अविनय भी तुमने मुझे दिया है, जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही बढ़, तुम सब कुछ हो जिसके, यह लज्जा यह शोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको, मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रथा ही उन्हें उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिंधु करूं अपने को मैं उनकी नर नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देख कराल काल सा किसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हय से, वह तुरंग पलित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय जय जय से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, उस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोजती सारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है,

कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अबला, पर वे तो विश्रुति वीर वली थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति, पर वे कब थे विषयों के चेहरे, ऐ मेरे अर्धांग भाव क्या विषय मात्र थे तेरे, हाँ अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे, है नारित्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्त बिहारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मत है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है, यदि मैं पति व्रता तो मुझको कौन भार भय भारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा के भूर भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर, आओ भोली भाली, तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख आली, वधु वंश की लाज देव ने आज मुझी पर डाली, बस जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक, देखूं बस मैं दानी, कहां तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे यशोधरा कर धारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सखी प्रियतम है वन में, किंतु कौन इस मन में, दिव्य मूर्ति वंचित भले चर्म चक्षु गल जाएं, प्रलय पिघल कर प्रियना जो प्राणों में ढल जाएं, जैसे गंध पवन में, सखी प्रियतम है वन में।

प्रतीते यही बड़ा बल जन में सखी प्रियतम है वन में भक्त नहीं जाते कहीं आते हैं भगवान यशोधरा के अर्थ में अब भी यह अभियान मैं निज राजभवन में सखी प्रियतम है वन में।

राम, यहीं इसी आंगन में सखी प्रियतम है वन में। मरण सुंदर मन आया री, शरण मेरे मन भाया री, आली मेरे मन स्ताव से पिघला हुआ वह इस बार, रहा कराल कठोर काल सो हुआ सदै सुकुमार, नर्म सहचर सा छाया री, मरण सुंदर बन आया री, अपने हाथों किया विरह ने उसका सब श्रृंगार, पहना दिया उसे उसने मृद मानस मुक्ता हार, विरुण विहंगों ने गाया री, मरण सुंदर बन आया री, फूलों पर पद रख कूलों पर रच लहरों से रास, मंद पवन के स्पंदन पर चढ़ बढ़ आया सा विलास, भाग्य ने अवसर पाया री, मरण सुंदर बन आया री, फिर भी गोपा के कपाल में कहां आज यह भोग, प्रियतम का क्या यम का भी है दुर्लभ उसे सुयोग, बनी जननी भी जाया री, मरण सुंदर बनाया री, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, जिए जल जल कर काया री, मरण सुंदर बनाया री, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना है, गिरने को ही मेह बना, जलता स्नेह जलावेगा ही, फोले वाष्प फलावेगा ही, मिट्टी मेह गलावेगा ही, सब सहने को देह बना, जलने को ही स्नेह बना, यही भला आंसू बह जावे, रक्त बिंदु कह किसको भावे, मैं उठ जाऊं सखी वे आवे, बसने को ही गेह बना, जलने को ही स्नेह बना, सखी वसंत से कहां गए वे, मैं उष्मा सी यहां रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग ना पाया, सूखा कण पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, जागी किसकी बाष्प राशि जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी, सखी वसंत से कहां गए वे, मैं उष्मा सी यहां रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया, सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा जठर मही, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही, जागी किसकी बाष्प राशि जो सूने में सोती थी।

विष्ठल में नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों के कलकल में पर में तेरे मध्यान बता क्यों तेरी मूर्छा बन